0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: बहुत ही ज़्यादा बेशरम काम किया आपने. आपने एक फ्ली मार्केट से टी शर्ट खरीदी और उसके ऊपर एक ब्रांडेड आपने लेबल लगा दिया और अपने बॉयफ्रेंड को बोला, जानू मैं तेरे लिए 10,000 की टी शर्ट लेकर आई हूँ. इसीलिए कहते हैं कि लव इज अ लॉट लाइक ड्रग्स. अगर आपको प्यार हो जाए तो आपका दिमाग चलता ही नहीं है. अगर हो गया आपको प्यार, व्हाई डोंट यू हिट मी अप मेरे यार एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE और मेरे साथ लाइन पर है मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय मैम, कैसे हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ. मैम मत बोलो यार, हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं कोई केमिस्ट्री टीचर हूँ या किसी को मैथ्स पढ़ा रही हूँ. इट्स जस्ट सो स्कैरी. आई डोंट.
3: Oh my God, man. So glad आपने कॉल किया.
2: आपने मुझे अपना नंबर भेजा था, मुझे करना तो था ही. It's a matter of time.
3: I don't believe आपका कॉल आया. मैं तो देखा नहीं, आप लोग नहीं करते हो कॉल.
2: अरे किस ऐसा कौन कमबख्त कहता है कि हम फोन नहीं करते हैं. हम आपको फोन नहीं करेंगे तो किसको फोन करेंगे बताओ.
3: जस्ट अभी जिम से आया था, बताइए.
2: अच्छा, अमेजिंग, बहुत ही सही. तो बताऊंगी मैं, नहीं बताओगे आप कि जिंदगी में क्या चल रहा है आपके, अदर देन हैविंग अ हॉट बॉड.
3: हुआ यूं था कि मैं और मेरी एक फ्रेंड जो कि मुझसे 5 साल बड़ी थी, वो अभी एक अच्छी पोस्ट पे है एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट. तो वो मुझसे 5 साल बड़ी थी, हम लोग जिम में मिले थे एंड हम लोगों की थोड़ी केमिस्ट्री बन गई. तो हुआ कुछ यूं कि काफी टाइम बातें आते हुई और मुझे लगा कि दैट शी इज सीरियस. कॉज उसने मुझसे 3-4 बार पूछा था कि क्या आगे कुछ हो सकता है या फिर इस तरह से कि तुम कभी आगे रहोगे क्या. मैंने कहा हाँ. तो मैं थोड़ा सीरियस हो रहा था. एक दिन हुआ यूं कि हमारी जो इंस्टा पे चैट थी कुछ वो पकड़ ली उसके फादर ने. तो नेक्स्ट डे शी वाज सो क्राइंग. मेरे को 2 दिन से रिप्लाई नहीं आ रहे थे. कुछ टाइम तक हमारी बात नहीं. फिर जब बात हुई हम लोग मिले, हम उसकी कार में थे, थोड़ा मूवमेंट बन गया था और सडनली वहां पे पुलिस आ गई थी. तो मुझे विदाउट मैंने वो मतलब कोई आके आगे ऐसे कार के आगे खड़ा हो गया कि बाहर आओ. और मैंने उसको बोला कि तू गाड़ी चला और मैं हमने वो हमारे पीछे भागे हैं. सो दैट मोमेंट वाज सो सो एम्बैरेसिंग कि ऐसा कुछ मोमेंट हुआ था मेरे साथ. अब मैं किसी को ऐसे बताता हूँ, मतलब मेरे फ्रेंड से कभी शेयर करूँ तो एवरीवन इज लाइक यार वो तेरे से 5 साल बड़ी थी, यू आर जस्ट अ किड.
2: तो आप कितने साल के हो?
3: आई एम जस्ट 20 years old.
2: ओह, यू आर 20 एंड शी इज 25, सो क्लियरली शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना?
3: Yeah.
2: मिस्ट्री कॉलर, डोंट यू थिंक मुझे आपको रोशिफाई कर देना चाहिए?
3: Yes.
2: देयर यू गो माय डार्लिंग.
0: You've been रोशिफाइड.
2: आपसे बात करके बहुत मजे आए. थैंक यू सो मच. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है, मेरे पास है उसे सुनने के लिए. नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. सो हिट मी अप, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

भयंकर ट्रैफिक जैम है जिसमें से एक बंदा अपना सर निकालता है अपनी फैंसी सी बड़ी गाड़ी से और दूसरे बंदे से कहता है मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस ट्रैफिक जैम में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के अगेंस्ट थोड़ी सी स्क्रेप हो गई और दोनों बड़ी गाड़ियां थी। सो दिस गाय गॉट आउट ऑफ हिज बड़ी गाड़ी, मतलब उसने अपना सर निकाला शीशे से एंड सेड तूने मेरी गाड़ी खराब की है मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। एंड दैट गाय लुक्स एट हिम, और ये सब ट्रैफिक जैम में हो रहा है ब्रो। ही लुक्स एट दैट गाय एंड सेज सॉरी ब्रो, लेकिन वो काम मेरी बंदी का है, सिर्फ वो मेरा जीना मुश्किल कर सकती है। ही फ्लिप्ड हिम अ फिंगर और वैसे ही ट्रैफिक जैम खुल गया। एज इफ ये यूनिवर्स चाहता था कि छोटा सा ड्रामा मेरी आंखों के सामने हो जाए, ऐसे ही दिन बेटर हो जाता है नी। और अगर आपको भी ऐसे लगता है कि आपकी जिंदगी बकवास बदतर एब्सोल्यूटली डिस्गस्टिंग बनाने का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के पास है, मेरे यार व्हाई डोंट यू हिट मी अप। आपकी इस बीमारी का इलाज भी करने की कोशिश करेंगे हम। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। अब ढूंढो मुझे मीठा मीठा ऑन योर सोशल मीडिया एंड व्हाइल यू डू ऑल ऑफ दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Roshi Baba!
3: Roshi Baba ki!
4: काम डाउन भक्त जनो, आई रियलाइज कि आपकी जिंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट उन सबको सॉल्व करने के लिए आई हैव माई टिप्स एंड ट्रिक्स जस्ट फॉर यू. और अगर मेरी कजन की तरह आपको भी डेटिंग में बहुत इंटरेस्ट है और ब्लैक छोटे छोटे कपड़े पहनकर डेटिंग में और ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम ने आपकी डेटिंग सीन में काफी बीटी कर दी है, देन ऑल यू नीड टू डू इज, एंड ऑनेस्टली ये नुस्खा मैं नानी से बोरो करके लेकर आई हूँ, आपको सिर्फ नीम का पाउडर चाहिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है टू क्रिएट अ पेस्ट. इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पर लगाओ, 30 मिनट के लिए छोड़ दो, उसके बाद अपने बाल धो लो, एंड यू विल बी रेडी टू रॉक योर LBD विदाउट एनी डैंड्रफ. बेचारी नानी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की डेटिंग लाइफ सॉर्ट करते करते कितनी बूढ़ी हो गई है, बट शी स्टिल वोंट स्टॉप जस्ट लाइक मी. तो अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, हिट मी अप विद योर पर्सनल प्रॉब्लम ऑन इंस्टा या FB. आई बी हैप्पी टू हेल्प यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड एंड फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. And whatever you do, dandruff or no dandruff, kahin mat jana jana, kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Milci. Iskra bana, uskra bana, saka bana. Ja bana. Burga, burga. Na vjet bala burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से मुझे
2: बिल्कुल से बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहां रहा है
2: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा हूं मतलब
2: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
1: फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
2: क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: तेरा क्या होगा कालिया
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
4: अब मिर्ची खा
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
6: मिर्ची ROCHI रोशी रोशी
3: Mirchi Roshi.
7: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
8: Ew, आपको पता है कीप इन टच का हिंदी में लिटरल ट्रांसलेशन क्या है तो अगर आप उसे डिक्शनरी में डालो कि गूगल ट्रांसलेट कीप इन टच इन हिंदी उसका लिटरल ट्रांसलेशन है हाथ लगाते रहना Ew, sometimes literal translations don't work. और अगर आपके रिलेशनशिप में प्यार का ट्रांसलेशन इज अ लिटिल गड़बड़ वाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी टॉक अबाउट इट मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE और मेरे साथ लाइन पर अभी अनुराग है हेलो
9: जी
8: कैसे हो आप
9: मैं अच्छा हूँ आप बताइए
8: ये okay. बताओ आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है सिंगल होगी डबल रोटी हो
9: डबल रोटी होने वाला हूँ बहुत जल्दी
8: अरे वाह शादी वादी एक्साइटेड हो
9: बहुत ज्यादा आपको भी आना है
8: कहाँ है ये तो बता दो
9: मैम आगरा
8: आपने बोल दिया मैं आ गई बस मेरे लिए जलेबी और रबड़ी तैयार रखना मेरा बड़ा मन कर रहा है
9: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
8: अच्छा तो ये अरेंज मैरिज है लव मैरिज है
9: लव को अरेंज किया है
8: लव को अरेंज करा है मैंने ये तो सुना है कि अरेंज की लव हो गई लव को अरेंज कैसे करते हैं
9: लव था पर फिर घर वालों को मैनेज किया
8: हाँ कैसे मैनेज किया वैसे कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं आई थी आपको
9: नहीं कोई ज्यादा खास नहीं मान गए मेरे भी उसे भी
8: बहुत ही सही तो आप कितने टाइम से डेट कर रहे थे उसके पहले
9: दो साल
8: और दो साल में आपने फिगर आउट कर दिया कि भाई यही बंदी है इसी से शादी करनी है
9: बस इससे शादी करनी है
8: तो एक बात बताओ फॉर ऑल दोज पीपल जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं अपने माँ बाप को लव से अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कराने के लिए कोई टिप है आपके पास देने के लिए उनको
9: विश्वास जीतो अपने घर वालों का
8: अपने घर वालों का खुद पे तो होता ही है दूसरे के घर वालों का जीतने के लिए कह रहे हो क्या
9: जेन्युइन बन के रहो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना जैसे हो रियल वही दिखाओ बस
8: और हो जाता है इसमें काम
9: बिल्कुल हो जाएगा ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा सब हो जाएगा
8: ये एक्चुअली सच है पता किस्मत भी होनी चाहिए पर आप दोनों के बीच में कोई कास्ट इश्यूज नहीं थे ना
9: नहीं मैम सॉरी उसी वी आर फ्रॉम सेम सेम कास्ट।
8: हाँ तो तभी ना, क्योंकि क्या होता है अक्सर कि जब कास्ट सेम नहीं होती है ना तब इंडिया में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं कि व्हाटएवर। चलो खैर छोड़ो, कोई नहीं, आई एम तो वेरी हैप्पी फॉर यू। तो अब शादी, कितने लोग आ रहे हैं शादी में आपकी?
9: पूरी बारात जाएगी, कम से कम 400-500 लोग जाएंगे मेरे मिलने वाले। यार धूम धड़ाके से शादी होगी, मेरी शादी हो रही है।
8: क्या बात कर रहे हो,
9: मेरी बंदी से मेरी शादी हो रही है।
8: कुछ भी कह रहे हो ना, इंडिया में रोमांस का मीटर हमेशा हाई रहता है। मेरी बंदी से मेरी शादी हो रही है,
9: भूल मत जाना, आना है आपको पक्का, वरना मैं फिर जबरदस्ती आपको उठा के ले आ जाऊंगा।
8: ये भी इंडिया का एक और कमाल है कि भाई नो इज नॉट अ थिंग, हम तो तुमको जबरदस्ती, बट इस केस में तो हाँ ठीक है, मुझे बस याद दिला देना, मैं आ जाऊंगी। मुझे कपड़े बनवाने का टाइम भी चाहिए, बट मीन वाइल आपके लिए और आपकी गर्लफ्रेंड, अभी गर्लफ्रेंड और होने वाली वाइफ के लिए, ये मेरा छोटा सा तोहफा आपके लिए, ठीक है? और अब बड़ा सा तोहफा, मैं जब शादी पे आऊंगी और बारात में डांस करूंगी तब लेकर आऊंगी, ठीक है? बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे अपना नंबर भेजा, अपनी खुशी शेयर की।
9: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच रोशी,
8: थैंक यू बाबा, टेक केयर, बाय,
9: थैंक यू, बाय बाय
8: बाय। अच्छा तो अगर आपकी भी ऐसे शादी हो रही है और आप चाहते हो कि आपकी बारात में आई ऑल्सो कम इन डांस, यार ऑनेस्टली पता है इतने टाइम से शो कर रही हूँ और मुझे ऐसे लगता है दैट आई बिल्ड सच एन इनक्रेडिबल रिलेशनशिप विद यू थैंक्स टू योर लव, कि प्लीज हिट मी अप विद योर नंबर एंड योर गुड न्यूज, आई बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। इंस्टा पर ढूंढो मुझे, FB पर या आपके दिल में, बट व्हाटएवर यू डू कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्च
10: ना चुस्कियों में न सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

जैसे ही तुम किसी रिलेशनशिप में, स्पेशली एक सिचुएशनशिप नहीं, एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाते हो, यू स्टार्ट सीइंग रियली हॉट गाइज अराउंड यू. और ये थ्योरी मेरी है पर्सनली फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ गाइज फील द सेम वे, कि जैसे ही वो एक सीरियस रिलेशनशिप में आते हैं, सडनली जहाँ देखो हॉट और सिंगल लड़कियां नजर आने लगती हैं. मुझे लगता है ये नेचर का कोई सीक्रेट डेटिंग लॉ है कि जब तक तुम सिंगल हो, तुम्हारे आसपास हर गुड लुकिंग, हर इंटेलिजेंट, हर क्यूट इंसान टेकन होगा. जैसे ही तुम एक रिलेशनशिप में आते हो, सारे क्यूट, अडोरेबल, इनक्रेडिबल इंसान सिंगल हो जाते हैं. अगर आपको भी यही लगता है ना कि हाँ रोशी, ये सच है, ये नेचर का एक अजीब सा अनस्पोकन लॉ है, देन आई थिंक हमें नोट्स कंपेयर कर लेने चाहिए. एंड टू डू दैट, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: खाने में जब थोड़ा सा खट्टा अचार होता है ना तो खाना और ज्यादा स्वाद लगता है, राइट? वैसे ही जब आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर कोई बहुत ही बेवकूफी वाला काम करता है और आपका मन करता है एक थप्पड़ लगा दो उसे, आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ, हर रिलेशनशिप में मैंने अपने आप को यही समझाया है कि जैसे मेरे खाने की थाली में कभी कभी खट्टा अचार थोड़ा सा एक्साइटिंग कर देता है खाने को, वैसे ही कभी कभी मेरे बॉयफ्रेंड के ये बहुत ही बेवकूफी के काम जो मुझे बहुत इरिटेट करते हैं actually end up like the achar in the relationship. They just make it more exciting क्योंकि उसकी बेवकूफियों की वजह से मैं उसे डांटूंगी, फिर we will have an opportunity to make up and then we'll have an opportunity to make out. और अपने आप को यही समझाते समझाते मैंने इतने सारे साल जी लिए हैं without killing any one of my ex-boyfriends. तो अगर आपकी भी जिंदगी में your boyfriend या girlfriend थोड़े से extra कलेशी हैं, माफ कर दो यार, वो तो बस खट्टा अचार है इन योर बोरिंग खिचड़ी वाली लाइफ. ऑन दैट नोट, अगर सीरियसली बॉदर कर रहे हैं ना, देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर, आई बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. सो नाउ गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua, la burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: Hello, madam. Good evening.
1: Hi.
2: Bank se bolle ho na, hamari nahi scheme hai ye. Madam, taazi scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: है। सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए
2: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गया ना
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर दो।
1: हेलो
2: मैडम अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
3: प्रीति मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है। यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
3: प्रीति ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं
3: से सॉरी
1: सॉरी
3: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
1: कुकड़ो।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: गाना बजा दूं
1: Mirchi Roshi. Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: बहुत ही ज़्यादा बेशरम काम किया आपने. आपने एक फ्ली मार्केट से टी शर्ट खरीदी और उसके ऊपर एक ब्रांडेड आपने लेबल लगा दी और अपने बॉयफ्रेंड को बोला, जानू मैं तेरे लिए 10,000 की टी शर्ट लेकर आई हूँ. इसीलिए कहते हैं कि लव इज अ लॉट लाइक ड्रग्स. अगर आपको प्यार हो जाए तो आपका दिमाग चलता ही नहीं है. अगर हो गया आपको प्यार, व्हाई डोंट यू हिट मी अप मेरे यार एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE और मेरे साथ लाइन पर है मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय मैम, कैसे हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ. मैम मत बोलो यार, हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं कोई केमिस्ट्री टीचर हूँ या किसी को मैथ्स पढ़ा रही हूँ. इट्स जस्ट सो स्कैरी. आई डोंट.
3: Oh my God, man. So glad आपने कॉल किया.
2: आपने मुझे अपना नंबर भेजा था, मुझे करना तो था ही. It's a matter of time.
3: I don't believe आपका कॉल आया. मैं तो देखा नहीं, आप लोग नहीं करते हो कॉल.
2: अरे किस ऐसा कौन कमबख्त कहता है कि हम फोन नहीं करते हैं. हम आपको फोन नहीं करेंगे तो किसको फोन करेंगे बताओ.
3: जस्ट अभी जिम से आया था, बताइए.
2: अच्छा, अमेजिंग, बहुत ही सही. तो बताऊंगी मैं, नहीं बताओगे आप कि जिंदगी में क्या चल रहा है आपके, अदर देन हैविंग अ हॉट बॉड.
3: हुआ यूं था कि मैं और मेरी एक फ्रेंड जो कि मुझसे 5 साल बड़ी थी, वो अभी एक अच्छी पोस्ट पे है एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट. सो वो मुझसे 5 साल बड़ी थी. हम लोग जिम में मिले थे एंड हम

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

कई बार जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं एंड वी रियलाइज दैट सामने वाला इंसान डज नॉट फील द सेम वे अबाउट अस, इट ब्रेक्स आवर हार्ट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. जितनी बार वो इंसान कुछ ऐसा छोटा सा करता है ना जो हमें फिर से यकीन दिला देता है कि हम उसके लिए मरे जा रहे हैं, उसे जान दिए जा रहे हैं और उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स जस्ट अ टेरेबल फीलिंग. बट यू नो, जब मेरे साथ कभी भी ऐसा होता है ना, आई टेल माई सेल्फ कि मेरा प्रिविलेज है कि मैं एक इंसान को इतनी शिद्दत से मोहब्बत कर सकती हूँ. शायद उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि वो मेरी मोहब्बत देख पाए, उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि वो ऐसी मोहब्बत एक्सपीरियंस कर पाए, बट फिर भी जिस भी पर्सपेक्टिव से देखो, गेन तो मेरा ही है. इवन दो इट्स अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग, फिर भी टू लव इज वे ग्रेटर दैन टू बी लव्ड. आपको क्या लगता है इसके बारे में? कभी आप मेरी जगह पर रहे हो वेर यू लव्ड समवन क्रेजीली अनकंडीशनली और उस इंसान को इस बात का इल्म ही नहीं है? अगर हाँ या ना, वट एवर योर स्टोरी इज, उसे सुनाने के लिए वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफ पी पर. आई एम ऑल योर्स.

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Ne fiu pa la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hi. Ye पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है,
4: या बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
2: हेलो
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट गाना।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आदमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

छोटे होते ना मैंने टीवी पे एक फिल्म देखी और उस फिल्म के हीरोज देख के एक्चुअली गाना पर्टिकुलरली देखा, उसमें जो दो हीरोज थे उनको देख के मैंने ऐसे बोला, ये कैसे हीरोज हैं यार, ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये दो हीरोज थे दीपक पराशर और राज बब्बर। भाई देखिए उस टाइम पे हम आमिर खान, सलमान खान ऐसे लोगों को देखते थे तो इनके कंपैरिजन में ऐसे लुक्स को कंपेयर करते थे ना। वो तो बाद में बड़े हो गए समझ में आया कि फिल्मों में काम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको गुड लुकिंग होना चाहिए, आपको टैलेंटेड भी होना चाहिए। एंड राज बब्बर साहब स्पेशली इन दैट सॉन्ग, वो पार्टी सॉन्ग होता है उसमें वो ऐसे मुंह सा बना के रहते हैं बिकॉज अपेरेंटली जो हीरोइन होती है वो उनसे ब्रेकअप करके किसी और से शादी कर रही है। तो राज बब्बर साहब ऐसे हैरान परेशान दोनों हाथ उन्होंने ऐसे पीछे बांधे हुए हैं। खैर मुझे आज भी याद है वो गाना कौन सा है, तो वो गाना सुनते हैं और सुनेंगे राज बब्बर साहब की फिल्मी जर्नी आज शो पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Rambala. Murga, murga. Naviyat wala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
3: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
4: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
3: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
4: हाँ बताइए
3: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
4: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
3: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
4: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
3: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
4: बिल्कुल,
3: से कम मुझे
4: बिल्कुल सही बिल्कुल सही कह रहे हैं
3: जा कहां रहा है
4: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
3: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
4: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
3: यार क्या बात कर रहा
4: हूं मतलब नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
3: चल
4: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
3: कंपनी ये कर सकती है वो कर सकती है
4: बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
3: हेलो
4: भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर

0: बहुत से एक्टर्स गुरुदत्त साहब, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन साहब इनकी फिल्में देख के फिल्मों में आने के लिए इंस्पायर हुए, लेकिन राज बब्बर साहब, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। राज बब्बर साहब की फिल्मों में आने की फर्स्ट इंस्पिरेशन थी दारा सिंह जी की फिल्में। एक इंटरव्यू में राज बब्बर जी ने शेयर किया था, सुनिए।
1: कि वाकई मैंने सबसे पहले जिन फिल्मों से मैं प्रभावित हुआ था वो दारा सिंह जी की फिल्में थी और मुझे बहुत मजा आता था। लेकिन जंप दारा सिंह जी के बाद जो दूसरा जो जंप हुआ वो हुआ दिलीप कुमार साहब का। तो दारा सिंह से दिलीप कुमार, ये मेरी जिंदगी के अंदर दो फिल्मी जो है इंस्पिरेशन थी जिनसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया।
0: चलिए इसी बात पे दिलीप कुमार जी का एक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: आपको पता है राज बब्बर साहब और शाहरुख खान का क्या कनेक्शन है? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत ही पुराना और बहुत ही प्यारा कनेक्शन है। वो ये कि 1973 से 75 तक जब राज बब्बर साहब दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फिल्मी पढ़ाई कर रहे थे, तब वहाँ पे छोटे से शाहरुख खान काफी आते जाते थे। इस बारे में शाहरुख ने सुनी एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: हाँ, मेरे फादर जो थे बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग थे, तो वो एक छोटा सा वहाँ मेस था, कैंटीन चलाते थे, तो मैं आके वहाँ कैंटीन में बैठता था और सारे बड़े बड़े प्लेस मैंने पुराने किले में देखे जो इंडिया के आई थिंक सबसे अच्छे प्लेस थे। और मैं 8-9 साल का था और सारा दिन बैठ के मैंने एक्टर्स को देखता रहता था। राज बब्बर साहब तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं उनकी गोद में बैठा रहता था। मैं ऐसा राज बब्बर साहब को बब्बर शेर अंकल बोलता था, मेरी दोस्ती उनकी बचपन से, गोद में घूमता था मैं उनकी। मैं बता सकता हूँ, अभी वो मुझे बहुत डांटेंगे, मैं बताता हूँ। तो हम उस प्ले में सॉरी किसिंग सीन था, वो बड़ा रियल लाइफ प्लेस हुआ करते थे। तो मैंने एक दिन उनसे बोला, अंकल आप सचमुच किस करते हो उनको? तो कहते बेटा जाके आंटी से पूछ लो। तो उन्होंने मुझे काफी ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मुझे बदमाशी सिखाई, लेकिन बहुत प्यार किया मुझको राज बब्बर साहब।
0: क्या बात है, चलिए इसी बात पे हम दिल को छूने वाला ये होठों को छू लो तुम गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई,
1: चांद की बिना तेरे सुने ही बात हो गई।
0: ओहो, ओहो, ओहो, ओहो, ओहो।

0: प्यार में लोग अक्सर पैसे भी गंवा देते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा काफी किया था राज बब्बर साहब ने, जिस फिल्म में उनको स्मिता पाटिल जी के साथ काम करने का मौका दिखता था वो अपनी प्राइस ऐसे हाफ कर देते थे 50%। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: जया ये सच है, मुझे एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस थी, उनके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था और भी वैसे भी अच्छा लगने लगा था। वो दोनों ही बातें थी, बेहतरीन एक्टर के साथ में एक साथी के साथ में आप काम करें और दूसरा फिर आपको किसी की सोबत किसी के साथ उठना बैठना।
0: जी वैसे इनकी दोस्ती की शुरुआत नोकझोंक से हुई थी। पहली बार ये मिले थे 1982 की फिल्म भीगी पलकें के सेट पर। मैं यानी कि चारू आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट है पुरानी जींस पर ऑन मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मिड और लेट 70s में ऐसा बहुत बार हुआ कि लक और शोहरत पाने का चांस राज बब्बर साहब के ऐसे साइड में से गुजर गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में उनको रोल मिलते मिलते रह गया, या उनको साइन भी कर लिया गया तो बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया। फाइनली उनको पहचान मिली 1980 की BR चोपड़ा की इंसाफ का तराजू फिल्म से, जिसमें उनका रोल ना उफ इतना नेगेटिव था, कोई एक्टर ये रोल करने को तैयार नहीं था। इस बारे में सुनिए राज बब्बर साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: जी हाँ, कोई करने को तैयार नहीं था वो, क्योंकि नेगेटिव रोल था और बहुत ही इस तरह का रोल था कि सोच रहा था कि जो भी एक्टर करेगा उसकी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन जब चोपड़ा साहब ने मुझे इस रोल के लिए कहा तो मेरा खुशी के मारे ठिकाना ना रहा, क्योंकि मैं थिएटर से गया हुआ था और थिएटर के एक्टर के नाते मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं कोई हीरो कर रहा हूँ, पॉजिटिव रोल है या नेगेटिव रोल है। क्योंकि थिएटर में हम लोग वो रोल क्लियर करते थे कि जो बेहतरीन रोल होता है, जो सेंट्रल रोल होता है। तो मुझे लगा ये कहानी पूरी इस किरदार पे, इस करेक्टर की वजह से है कि ये जो करता है उसके बाद कहानी बनती है। चोपड़ा जी को हाँ किया, मैंने कहा मैं करना चाहूंगा।
0: और ये खतरनाक नेगेटिव रोल वाली फिल्म देखने जब ये अपनी मम्मा के साथ, अपनी फैमिली के साथ थिएटर में गए तब क्या हुआ, सुनते हैं थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची
1: हेलो
2: मैडम गुड इवनिंग
1: हाय
2: बैंक से बोल रहे हो ना हमारी नई स्कीम आई है मैडम ताजी स्कीम है बढ़िया स्कीम है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: तो सब्जी बेच रहा है या लोन के
2: पहले पहले सब्जी बेचता था
1: अगर अगली बार फोन आ गए ना
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारो सारे दांत बात कर दो
1: हेलो
2: मैडम अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे
3: प्रीति मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए अपने ऊपर पड़ जाती है यार आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आपका मुर्गा बन गया
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया
3: प्रीति ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
1: कुकड़ो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: छोटी होती ना मुझे राज बब्बर साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, क्योंकि जो भी उनकी फिल्में देखो इतने नेगेटिव रोल कई कई में होते थे। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जो वो पॉपुलर हुए ना वो 1980 की फिल्म इंसाफ का तराजू से पॉपुलर हुए, जिसमें उनका इतना नेगेटिव रोल था। और जब इस फिल्म के प्रीमियर पे वो अपनी फैमिली के साथ गए ना तब क्या हुआ, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था।
1: जब उसका प्रीमियर हुआ तो मैं अपनी माँ के साथ में विज्ञान भवन में देखने के लिए गया था, और हमारे पास में गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो टैक्सी में आए थे परिवार सब। तो जब यहाँ हम फिल्म देख के इंटरवल में बैठे थे तो हमें किसी ने पहचाना नहीं, फिल्म देखते रहे। उसके बाद एंड में बहुत गालियाँ पड़ रही थी मुझे, इंटरवल में भी हर आदमी गाली दे रहा था और खासकर औरतें बहुत गालियाँ दे रही थी, तो मेरी माँ को बहुत बुरा लगा। तो जब हम टैक्सी में बैठ गए तो मेरी माँ रोना शुरू हुई, तो मुझे लगा खुशी के मारे आंसू आ रहे कि उसके बेटे ने फिल्म में काम किया है। तो मेरे सिर पे हाथ फेरे जाए तो मैंने पाँव छू लिए उसके, तो मैंने जब पाँव छू तो मेरे सिर पे हाथ रख कहती बेटा हम कम खा लेंगे लेकिन तू ऐसा काम मत। तो मुझे लगा कि मेरी 3 साल की ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग और मेरी जो मेरी मेहनत थी, मैं लगा कि मेरी कामयाबी मिल गई, कि मेरी माँ ने भी समझा कि मैं ऐसा ही काम करता हूँ, ऐसा काम ना करूँ, तो मैं अपने उस रोल में सफल हुआ।
0: क्या ही बात है, मजा आ गया सुन के। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: राज बब्बर साहब ने 1975 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन पॉपुलैरिटी मिलते मिलते उनको अर्ली 80s हो गया। इस बीच में उनके पास काफी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन हाथ कुआई मुंह न लगी। बल्कि वो तो प्रकाश मेहरा साहब की एक बहुत बड़ी फिल्म में कास्ट भी हो गए थे। ये कब हुआ था, क्या सीन था, एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था, सुनिए।
1: 78 की बात है, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के रिलीज के लिए वो दिल्ली आए हुए थे। मेरे एक काम को देखकर प्रकाश मेहरा साहब ने बुलाया दिल्ली में मेरा एक, और मुझे उन्होंने दो फिल्मों के लिए साइन किया। मैंने कहा मैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आप मुझे काम दे रहे हैं, बहुत बड़ी फिल्म में काम दे रहे हैं, बहुत बड़ा रोल दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास वहाँ रहने को कोई जगह नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई दोस्त है। तो बोले क्या चाहते हैं? मैंने कहा साहब अगर आप, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ तो मुझे एक साल की रहने की जगह दे दी, फिर देखना शुरू कर दे। तो उन्होंने कहा कि ओके, कब आना चाहते हैं? मैं सब 1 जनवरी 1979, उन्होंने अपने आदेश का तवन इसका एड्रेस लेके टिकट भुजवा। पहली बार मुझे हवाई जहाज की टिकट दी थी और मैं हवाई जहाज में बैठा था।
0: भाई बैठ के ये सपनों की नगरी बॉम्बे तो पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते से इनके सपने टूट गए, क्योंकि जिस फिल्म की ये बात हो रही थी उसमें इनको हटा के शशि कपूर साहब को साइन कर लिया गया। अमिताभ बच्चन भी थे उस फिल्म में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर पुरानी जीन्स विद चारों।

0: आपको पता है नमक हलाल फिल्म में जो रोल शशि कपूर साहब ने निभाया था उसकी फर्स्ट चॉइस विनोद खन्ना जी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन विनोद खन्ना साहब तब फिल्म में छोड़ रहे थे, तब एक नए एक्टर को साइन किया गया, राज बब्बर जी को। लेकिन उनके साथ फिल्म के काफी लोग काम करना नहीं चाहते थे। फिर शत्रुघ्न सिन्हा साहब को लाया गया, उनके साथ अमिताभ बच्चन काम करना नहीं चाहते थे। तो इस फिल्म में रिप्लेस किए जाने के बारे में एक बार एक इंटरव्यू में सुनिए राज बब्बर साहब ने क्या कहा था।
1: सर, मेरे साथ ऐसे हादसे होते रहे कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो कुछ छीन के और ले जाता था। लेकिन छीन के नहीं कहूंगा, मुझे प्रकाश मेहरा साहब ने दो फिल्मों के लिए साइन किया था, एक नमक हराम थी और एक और फिल्म थी नमक हलाल। साइन किया था, यहाँ से लेके गए थे। मैंने उनसे कहा था भाई मुझे, मेरे पास में वहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, आप सबसे पहले मुझे घर दीजिए। तो उन्होंने मुझे रहने के लिए एक साल के लिए जगह दी। तो जब मुझे उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी मजबूरी है तुम्हें, इसमें हम रोल नहीं दे पाएंगे, रोल नहीं दिया, लेकिन साल भर के लिए उन्होंने मुझे वो कमरा और वो घर दे दिया। और बस वो घर और कमरा था जिसकी वजह से आज मैं बम्बई में अपना घर बना सका।
0: चलिए, घर भी बन गया, बाद में करियर भी बन गया। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

0: लेट 70s में जब राज बब्बर साहब अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, उनको दो बहुत बड़े रोल्स के लिए साइन किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक तो नमक हलाल में जो शशि कपूर साहब का रोल था वो, और दूसरा शक्ति फिल्म में जो अमिताभ बच्चन साहब का रोल था। दोनों रोल्स में उनको रिप्लेस कर दिया गया। शक्ति फिल्म को लेकर उनको काफी दुख हुआ, बिकॉज अपने आइडल दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका तब उनको नहीं मिला। इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए राज बब्बर साहब ने क्या कहा था।
1: ये सच है कि मुझे सलीम जावेद साहब ने दिल्ली में, मैं प्ले करता था, नाटक करता था, यहाँ से मुझे पिकअप किया था और मेरा प्ले देखा भी उन्होंने। फिर मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। मेरा स्क्रीन टेस्ट जो है दिलीप कुमार साहब को दिखाया गया। प्रोड्यूसर मुशीर रियाज साहब थे, डायरेक्टर अमीर सिप्पी साहब थे, मैं सेलेक्ट हो गया। फिर कुछ कमर्शियल हालात की वजह से मुझे उस फिल्म में से हटा दिया गया बाद में, पहले साइन हो गया था।
0: वैसे इस फिल्म में अगर वो काम करते तो स्मिता पाटिल जी के ऑपोजिट होते। कोई ना, उसी साल भीगी पल के नाम की एक फिल्म में उनके ऑपोजिट हो गए। चलिए, जिस चीज में होना होता है वो ऐसे नहीं तो वैसे करके हो ही जाती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना, उसका बाना, सबका बाना,
3: क्या बाना?
2: मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: हाय, ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
6: हेलो।
4: हेलो,
6: कौन बोल रही हैं
4: आप? कौन बोल रही हैं?
6: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
4: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
6: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
4: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
6: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
4: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे,
6: हो सकता है, हो सकता है।
5: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
6: हेलो।
4: हेलो,
6: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा हूँ, लाइन में आ रहा हूँ। अच्छा, एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे को जा रहा
4: है,
6: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
5: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
4: तो वो आ रहा जा रहा, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: हाथ को आया मुंह न लगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और बहुत हुआ ऐसा राज बब्बर जी के साथ भी जब वो लेट 70s में अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। भाई 1975 में NSD से पास हुए, फिर 1977 में एक फिल्मों वाला टैलेंट शो भी जीता। उनके थिएटर शोज देखकर उनको बहुत सारी फिल्मों में लेने की बात हुई, लेकिन किसी फिल्म से उनको बिना बोले निकाल दिया गया, किसी फिल्म से बोल के निकाल दिया गया। इनफैक्ट एक फिल्म में तो उनको एक बहुत ही वियर्ड वजह से निकाला जाने वाला था, लेकिन थैंक्स टू फिल्म की हीरोइन उन्होंने उस फिल्म में काम किया। वो कौन सी फिल्म थी, इस बारे में राज बब्बर साहब ने एक इंटरव्यू में क्या कहा, सुनिए।
1: यूनाइटेड प्रोड्यूसर टैलेंट कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हो चुका था, तो लोग बहुत सारे जानते थे। मोहन सहगल जी डायरेक्टर थे, वो फिल्म बना रहे थे दौलत। उस फिल्म में सारिका के अपोजिट एक रोल था, और वो सहगल साहब की वजह से मुझे दौलत फिल्म मिली। शूटिंग हुई, शूटिंग होने के बाद में प्रोड्यूसर को मेरी नाक अच्छी नहीं लगी कि मेरी नाक बहुत लंबी है। उन्होंने मेरे रोल के लिए वीरेंद्र खाटके जी को ले लिया। थैंक्स टू सारिका जी, उन्होंने बोला प्रोड्यूसर को, आपने ले लिया, चलिए शूटिंग कीजिए, क्यों किसी का नुकसान करना। सारिका जी को याद भी नहीं होगा, लेकिन सारिका जी की फिल्म में मैं पहली बार आया था यहाँ मुंबई में।
0: Well, इस फिल्म की शूटिंग लेट 70s में हुई थी, लेकिन ये रिलीज जाके 1982 में हुई थी। और अभी हो रही है एक म्यूजिकल ब्रेक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: बूंद बूंद सागर बनता है, कदम कदम एक राह बने। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी होती है, पूरा निबंध लिखना हो तो शुरुआत एक वाक्य से ही होती है ना। और एक वाक्य भी नहीं बोलने को मिला था राज बब्बर साहब को उस फिल्म में जिसकी शूटिंग उन्होंने सबसे पहले की थी। इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: मैंने वो फिल्म 500 रुपए में करी थी, फिल्म का नाम था शारदा। वैसे मैं उस फिल्म में सेकंड हीरो था सारिका जी के सामने, लेकिन उस एंड में मेरा चेहरा नजर आता है और जितेंद्र साहब जब मुझे पकड़ लेते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ नहीं पहचाना आपने, तो सारिका कहती है वही है। बस इतना सा लाइन थी मेरी।
0: वही लेट 70s की बात है और ये फिल्म फाइनली जाके 1981 में रिलीज हुई थी। तब तक तो राज बब्बर जी पता नहीं कितनी फिल्मों में कितने वाक्य कितने सही सही डायलॉग्स बोल चुके थे। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।
2: अभी अलविदा मत कहो।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, जिनकी डायलॉग डिलीवरी क्या कमाल की है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये है राज बब्बर साहब और इनका एक डायलॉग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है 1983 की मजदूर मूवी का, जिसमें एक इंजीनियर होते हैं और फैक्ट्री की मशीन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो सुरेश ओबेरॉय जो मालिक होते हैं वो इनको बुलाते हैं रिपेयर करने के लिए, तो बस ये हथौड़ा मारते हैं। उसके बाद की डायलॉग बाजी सुनिए।
1: क्या मजदूरी हुई तुम्हारी? 1,000 रुपया। एक हथौड़े का 1,000?
2: जी हाँ,
1: हथौड़ा मारने का 1 रुपया और 999 रुपए ये जानने के कि हथौड़ा कहाँ मारा जाए।
0: समझे, वैसे विलन के रोल में भी इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया डायलॉग मारे हैं। इनका एक डायलॉग एक टीवी शो पे इनको बोलने को कहा गया, थोड़े से पॉलिटिशियन मोड में आके इन्होंने डायलॉग बोला, सुनिए।
3: देखिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हो गया हूँ, आपके कहने से बोल देता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि लोग कुत्ते की मौत को भूल जाएंगे।
0: चलिए, इसी बात पे मेरे यानी कि चारू की तरफ से है बाय, हेलो हाय यहीं पर होगी पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La
1: firma la burka. Milci, burka. Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम
2: बिल्कुल, से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहां रहा है
2: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस हैं उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा
2: हूं
1: मतलब
2: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
1: आपको से फोन मत करियो मैं हाँ? इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
2: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ा

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं
2: आप? कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे,
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार? तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है
4: यार, बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।
2: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांट्स में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभावपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरणम्।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: Marriage Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुछ चीजों की आदत या एडिक्शन से बाहर कैसे निकला जा सकता है, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ये बहुत अच्छी आपने बात की कि कुछ चीजें जब शायद हाथ से बाहर जा रही तो ट्राई करके देखो भाई, एक दिन करो, दो दिन करो, कि भैया दो घंटे हम कुछ गेम खेलते हैं, दो घंटे हम कुछ कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो शायद वो टेक्नोलॉजी से, मोबाइल फोन से स्पेशली दूर रहेंगे या खाना खाते वक्त टेलीविजन नहीं देखेंगे। कई बार मैंने ट्राई किया है और ये बहुत काम करता है, क्योंकि उस समय कॉन्वर्सेशन भी अच्छी होती, वो सारी बातें मुझे बता देती है जो वरना शायद नहीं बताती, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब चलो अच्छी बात है, हम सही ट्रैक पे हैं। लेकिन ज्यादातर मैं क्या देखता हूँ कि जैसे ही वो एक घंटा या दो घंटा आधा घंटा खत्म हुआ, वापस जाके अपने फोन पे अपने कमरे में बैठ जाती है। अब सारा दिन तो हम गेम नहीं खेल सकते, सारा दिन हम डिस्कशन नहीं कर सकते, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ज्यादा टोकूंगा तो फिर इंटरफेरेंस लगेगा, वो और दूर हो जाएगी शायद मुझसे। तो इस समय पे मैं क्या करूँ धीरे धीरे कि उसकी जो आदत है वो छूट जाए, एडिक्शन की तरफ जा रहा है मुझे लग रहा है। फोन पे होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जब भी उसके पास कुछ करने को नहीं होता वो अपने फोन पे गेम खेलने लग जाती है, कुछ करने लग जाती है। हाउ डू आई गाइड हर कि भाई ये सही नहीं है, तुम इस पे क्यों नहीं ध्यान देती?
4: दिस इज समथिंग अ कॉमन प्रॉब्लम एवरीबॉडी इज फेसिंग। ये थोड़ा कॉमन ही हो गया है कि ये जो फोन का एडिक्शन है, बिकॉज फोन क्या कर रहा है, यू हैव टू मेक नो एफर्ट टू फील गुड।
3: हाँ बिल्कुल।
4: एंड आप शायद अपनी लाइफ में कई बार उतने खुश नहीं होते, तो कहीं पर एस्केपिज्म भी होता है। किसी के लिए एस्केपिज्म होता है, किनारा करना होता है, किसी के लिए कुछ देख करके टाइम पास करना होता है, किसी के लिए यू जस्ट वांट टू एस्केप योर रियलिटी फॉर सम टाइम, किसी के लिए वो एक प्लेजर भी हो सकता है, यू प्ले अ गेम, यू गेट योर हाई, यू गेट योर एड्रेनलिन, कुछ ना कुछ तो है। इसमें तो यही है कि जब बड़ा कोई हो जाता है, लेटिंग गो ऑफ एनी एडिक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। एडिक्शन बहुत बहुत पावरफुल चीज है, उसको छोड़ना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है, और वो तब तक नहीं हो पाता जब तक वो व्यक्ति करना नहीं चाहे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची 101.3।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Lead by example. बदलाव लाने का ये सबसे पावरफुल तरीका क्यों होता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: पेरेंट्स खुद उस चीज को यूज कर रहे होते हैं पर चाहते हैं कि बच्चे नहीं करें, और फिर उनके पास हर प्रकार का जस्टिफिकेशन होता है कि हमारे पास वर्क है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको क्या है। बट अगर आप कुछ भी डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, लीडर का रोल ही ये है, यू लीड बाय एन एग्जांपल, एंड एक्चुअली दैट इज द ओनली फॉर्म ऑफ लीडरशिप, टू लीड बाय एन एग्जांपल। सी इवन सम वेरी वेरी टॉप एक्टर्स, आई रिमेंबर इन वन ऑफ द इंटरव्यूज मिस्टर शाहरुख खान सेइंग कि मैंने घर में अपना फोन यूज नहीं करता हूँ, आई डोंट यूज इट एट ऑल, तो बच्चे भी नहीं करते हैं। और ये हमेशा से हमारा ये सिस्टम रहा है, आप शुरू करेंगे, घर के बड़े शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे धीरे धीरे उनको भी ये हैबिट पड़ने लगेंगी, कॉन्वर्सेशंस को एंजॉय करेंगे, गेम्स को एंजॉय करेंगे। तो पहले तो घर के बड़ों को वो सिस्टम बनाना पड़ेगा। फोन को ऐसे रख दें जैसे पहले घर में वायर्ड फोन होता था ना, पड़ा है वो बचता था, हम उठ के जाते थे, अटेंड करते थे, फिर वहीं पर ही रख देते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना भी नहीं चल सकता है।
4: सही बात।
3: पर फर्क इतना है कि जब तक फोन तार से बंधा हुआ था हम फ्री थे, अब फोन फ्री है, मोबाइल है,
4: लेकिन हम बंधे हुए हैं,
3: हम उसके गुलाम है। सब करेंगे ना, तो और सब एक दूसरे को एजुकेट करके करेंगे कि ये अच्छा नहीं है, ये हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा टाइम खराब कर रहा है। और फील भी होता है, यू नो, वन आवर यू स्पेंड वॉचिंग रील्स एंड देन यू फील सो ड्रेन्ड, एंड देन यू फील किया क्या, मतलब मैंने आई जस्ट वेस्टेड माई टाइम। तो आपको और कई बार बच्चों को भी गिल्टी फील होता है, डिसहार्टन फील होता है, दे वॉन्ट टू गेट ओवर इट, कर नहीं पा रहे। सो लेट्स हेल्प ईच अदर, लेट्स ब्रिंग लिटिल चेंजेस।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कभी कभी बच्चे ट्रिकी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं, उन्हें समझदारी से कैसे हैंडल करें, आइए इस पर बात करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मुझे याद है मैंने अपनी छोटी बेटी के साथ एक चीज शुरू की थी कि भैया अब हम ऐसा कॉन्टेंट देखते हैं जो थोड़ा पॉजिटिव हो, जो अच्छी चीजें सिखाए। मैं नहीं कह रहा हूँ तुम सीरियल मत देखो, ओटीटी मत देखो, फिल्म मत देखो, बट इस तरह की देखने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा इंस्पिरेशनल हो, उससे शायद हम कुछ सीखें। अब उसके एग्जाम के समय वो हर 15 मिनट में या फोन पे होती है या टेलीविजन देख रही होती है, मैं कहता हूँ भाई तुम इस समय पढ़ लो, ज्यादा मैं टोकता उसको नहीं हूं। तो कल क्या हुआ, मैं देखा कि एग्जाम का समय चल रहा था, वो एक फिल्म देख रही थी जो फिल्म मैं उस चाहता था वो बहुत दिनों से देखे, बहुत अच्छी फिल्म है। मैंने कहा अरे तुम ये फिल्म देख रहे हो, वेरी हैप्पी। फिर मैं सोचा है अभी तो एग्जाम चल रहा है इसके, आई शुड बी हैप्पी। तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं, 15-20 मिनट उसने देखा। मैंने कहा बेटा अभी तुमने 20 मिनट देख लिया, अच्छी बात है, इसको पॉज कर लो, बाद में देखना, ठीक है, थोड़ी देर पढ़ लो फिर वापस देख लेना। कहती आप अजीब हो, जब मैं अच्छी फिल्में देखता हूं तब भी आप मुझे टोक रहे हो, आप चाहते क्या हो? आफ्टर पॉइंट आई डिडंट नो व्हाट टू टेल हर।
4: No, but you know your child, na? ऐसा भी हो सकता है that if your child, मतलब अगर वो बड़ा है and you know कि उसने पढ़ लिया होगा, she is well prepared, she is just taking a break, तो फिर हम क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं?
3: मैं अपने बच्चों को जानता हूँ, उसने कुछ नहीं पढ़ा।
4: हाँ, तो देन तो फिर देन यू विल हैव टू टेल देम ना। अगर आपको पता है, एक होता है कई बच्चे होते हैं सारा साल पढ़ते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले बहुत इजी होते हैं।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: बहुत बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले कुछ देख रहे होते हैं, उनका मन शांत होता है, काम होता है, बट दे हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड दे परफॉर्म वेल। कई बच्चे होते हैं जो पूरा साल नहीं पढ़ा, तो वो एक दिन पहले भी नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? सो एज अ पेरेंट उनको गाइड करना, इन्फॉर्म करना, डिसिप्लिन करना, बार बार प्यार से कहना आपका रोल है। बाकी क्या कर सकते हैं, हर एक अपने कर्म से तो अपना भाग्य बनाएगा ना, आप किसका भाग्य तो नहीं बना सकते। आज भगवान भी परफेक्ट पेरेंट होकर के गाइड ही तो कर सकता है।
3: सही बात है, वो हमारे लिए आके जी नहीं सकता।
4: अगर जी लेता तो परफेक्ट दुनिया होती ना, वॉर थोड़ी ना हो रहे होते। ऐसे एज अ पेरेंट आप ही ट्रस्टी हैं, इंस्ट्रूमेंट है, यू कैन गिव बेस्ट सस्टेनेंस, बेस्ट पेरेंटिंग, बेस्ट गाइडेंस, उसके बाद थोड़ा डिटैच होना जरूरी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 5G Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: High risk, high reward. ये concept असल में क्या कहता है? आइए इसे समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: सिस्टर, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने तीसरी बार जीता और दो बार बैक टू बैक जीता, और ये पहली कंट्री बनी जिसने होम पर T20 वर्ल्ड कप जीता. इसके पहले कभी नहीं हुआ. खुशी की बात तो है, लेकिन इसमें जो मेरा दो तीन चीजें मैंने ऑब्जर्व की, मुझे लगा कि इस बारे में जरूर हमें बात करनी चाहिए, वो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना गौतम गंभीर आए थे मैच जीतने के बाद, और सूर्य कुमार यादव आए थे, और गौतम गंभीर ने कहा कि हम हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का गेम में बिलीव करते हैं, इसलिए बहुत बार इंडिया ने 250 के ऊपर 20 ओवर में मारे. तो जब मैं ये सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि जब ये काम कर जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड किसी भी चीज में, दुनिया में हो, आप शेयर मार्केट में करते हैं, आप अपनी जिंदगी वैसे जीते हैं कि भैया मैं तो फ्रंट फुट पे ही खेलूंगा, कई कभी बार ये पुल ऑफ नहीं होता, एंड देन यू लूज एवरीथिंग. इट लुक्स वेरी वेल व्हेन इट हैपेंस आपके तरीके से, उस समय क्या करें जब इट डजंट वर्क आउट फॉर यू.
4: See, risk is also very different for different people. How prepared you are. If you're very prepared, जो आपके लिए high risk होगा, वो मुझे इतना risky नहीं लगेगा. If I've been doing something for over a period of time, चाहे वो stock market है, चाहे वो एक game है, मेरा high risk और आपका high risk पे अलग होगा. मेरी capacity के according जो चीज मुझे बहुत risky लगेंगी, शायद आपके लिए उतनी नहीं होंगी. So when you are playing at an international level, when you're doing something very very big, so you have to take some risk. But वो तभी possible होता है जब आप well prepared है. क्योंकि whenever there is risk, there's pressure ना.
3: Absolutely.
4: तो उस pressure को deal करने के लिए inner strength चाहिए, नहीं तो आप उस pressure में collapse कर जाएंगे. अगर आपने उतनी preparation है, mental preparation है, physical preparation है, talent और skill के level पर preparation है, then you are able to take that risk and also perform. और कभी कभी अगर वो नहीं होता है, then see, life की हर सीन में अगर आपका एटीट्यूड लर्निंग का है, so then there is nothing success and failure at a personal level. Game में success failure है, you are always growing. आप अगर grow कर रहे हैं तो you are successful, आप उससे भी कुछ सीख लेते हैं.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. Only on Mirchi. It's hot.

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: टी20 वर्ल्ड कप की जीत सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि लाइफ के कई इम्पोर्टेंट लेसन भी सिखाती है, आइए उन्हें समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, उन्होंने कहा कि हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम खेलते हैं। मैं सोच रहा था दुनिया के संदर्भ में अब AI आ गया, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, हर कंपनी में बोला जा रहा है कि भैया हम AI को अडॉप्ट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और सबको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ही चाहिए। ऐसे में अगर मैं एक ऐसा एम्प्लॉय हूँ जो उस विजन के साथ मैच नहीं करता, मुझे लगता है जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ और ऐसे ही करना जरूरी है, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन कंपनी जो है वो अलग दिशा जा रही है, या मैं क्रिकेटर ही हूँ और मैं फिट नहीं बैठता उस विजन के साथ, तो सिर्फ छोड़ना एकमात्र ऑप्शन बच जाता है मेरे लिए?
4: नहीं, इसे अगेन डिपेंड करता है ना कि अगर आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप पर्सनल लेवल पर किस प्रिंसिपल्स के साथ चलना चाहते हैं वो एक चीज है, पर कंपनी में फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आप सब मिलते हैं, नाउ अगर नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो वो सबका विजन एक सेम होना चाहिए। सो देन यू नीड टू डिस्कस एंड देन यू नीड टू हेल्प ईच अदर टू अंडरस्टैंड कि इसको क्यों अडॉप्ट करना है। ज्यादा मेहनत वहां करनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर उस व्यक्ति को वो चीज कन्विंस नहीं हो रहा है तो हम थोड़ा टाइम ले, हम उस चीज को उस व्यक्ति को भी कन्विंस करने की कोशिश करें। एकमत होना जरूरी है इफ यू वॉन्ट एनीथिंग टू वर्क। सफलता अगर आप चाहते हैं तो टीम को एकमत होना जरूरी है, पर वो एकदम तो नहीं होंगे। द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गोइंग टू डू अ मीटिंग सबके ओपिनियंस पर्सपेक्टिव्स राय अलग होगी, वो कर लें जो मेजोरिटी को भी राइट लग रहा है ना, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। जरूरी होता है इसमें थोड़ा सा स्लो जाना, थोड़ा टाइम देना। फॉर एग्जांपल आज मैं आपके सामने जो बात रखूंगी अगर वो आपका पर्सपेक्टिव नहीं है तो आप इमीडिएटली उसको ना बोल देंगे, बट इफ आई गिव यू सम टाइम एंड आई से थिंक अबाउट इट, आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, आप थोड़ा सोचें, देन वी हैव अनदर मीटिंग इन 1 week, यू विल बी लिटिल ओपन, यू माइट नॉट बी कम्प्लीटली ओपन बट यू माइट बी लिटिल ओपन टू अंडरस्टैंड दैट। What I am trying to say is कि सबको वन पेज पे लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी राय ने सफलता नहीं लेकर के आनी है,
3: सबके
4: लोगों ने लेकर के आनी है। प्लीज अंडरस्टैंड कि वो आइडिया बेस्ट आइडिया भी हो सकता है, लेकिन अगर करने वाले ही कन्विंस्ड नहीं है तो वो बेस्ट आइडिया के अंदर भी असफलता मिलेगी, और अगर आइडिया एवरेज भी है लेकिन करने वाले सब सहमत है, इट इज वन टीम, एवरीबडी इज ऑन वन पेज, सफलता हो जाएगी। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनता है, तो कोई भी चीज असंभव से संभव बन जाएगी इफ एवरीबडी इज इन इट टुगेदर।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: HD Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम उन्होंने SMS बताया है, पूरा नाम नहीं लिखा है। वो कहते हैं कि ओल्ड एज में रिटायरमेंट हो गए मेरे, लेकिन सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो हैं वो स्लोली अब डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, या वो मुझसे हो रहे हैं या मैं उनसे हो रहा हूँ, वो उन्होंने नहीं लिखा है। अब क्या करूँ, प्लीज एडवाइस।
2: आपका क्वेश्चन सुन करके मुझे कल ही मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी, न्यूज़ में थी शायद, कि एक व्यक्ति था मना जो थक करके बस में जा रहा था, और फिर एक ओल्ड मैन आया तो उसने अपनी सीट उनको दे दी क्योंकि बुजुर्ग सा था। और वो भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि जैसे बहुत थका हुआ था, दिल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी बुजुर्ग को देखा तो सीट दे दी, और फिर हल्की सी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने उसको पूछा कि आप कैसे हैं, कहाँ काम करते हैं, एनी फेल्ट कि वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था बहुत काम था, काइंड था। थोड़ी बातचीत होती रही, उसके बाद स्टॉप आ गया उस बुजुर्ग व्यक्ति का उतरने का, और फिर उसने कहा आई रियली नीडेड टू टॉक, मैंने 4 दिन से किसी से बात नहीं करी थी, मुझे सच में किसी से बात करने की ज़रूरत थी। एंड ही वाज़ शेयरिंग कि कभी कभी हमारे छोटे छोटे काइंडनेस के एक्ट कैसे किसी के जीवन में थोड़ी सी लाइट लेकर के आ जाते हैं। और वो बहुत टायर्ड था, लेकिन छोटा सा एक कर्म हेल्प का, छोटा सा कर्म एक काइंडनेस का, ही फेल्ट दैट द डे मेंट समथिंग टू हिम, जो वो इतना ऑर्डिनरी दिन था उसका कुछ मीनिंग हो गया। तो हमारे जो ओल्ड एज के लोग हैं, ऑल ऑफ अस हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम थोड़ा थोड़ा उनसे बातचीत करें। दिस इज़ फॉर द यंग जनरेशन। आप पार्क में जाते हैं, आप कभी उनसे मिलते हैं, हम कई बार उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट हमें लगता है ये क्या हमें इतना चिपकते रहते हैं, ये क्यों हमसे इतनी बात करते रहते हैं, बट दे रियली आर लुकिंग फॉर सम कंपनी। बच्चे बिजी हैं, जॉब पर जाते हैं, घर में कोई बात करने वाला नहीं है। सो दिस इज एक हम कोशिश कर सकते हैं, एक स्माइल, एक मिनट की बातचीत उनको कंफर्ट देता है। एंड सेकेंडली जो है बुजुर्ग में, वो इतने डिसहार्टन नहीं हो, दिल शिकस्त नहीं हो, वो भी भारत में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं बातचीत करने की, कोई गार्डन है, कोई पार्क है, कोई कंपनी है, अकेले नहीं बैठे, नेगेटिव साइकिल चलना शुरू हो जाता है। आपको कोई सत्संग अच्छा लगता है वहाँ जाएं, वो भी नहीं अच्छा लगता है, तो कोई फ्रेंड्स के साथ किसी ग्रुप में जाएं, बातचीत करें, अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम निकाल करके बातचीत करें तो अच्छा लगेगा।
1: बहुत खूबसूरत।
2: नहीं तो अगर कोई ऐसी हॉबी है जो छूट गई है पीछे,
1: उसको शुरू करें।
2: हाँ, हम ये नहीं, सी एज इज जस्ट अ नंबर, यू नो, समटाइम्स इट इज इन द माइंड मोर देन द बॉडी। अब मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मे बी आप उतनी स्पीड पे नहीं कर सकते, मे बी आप उतने अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग क्योंकि एक तो वो प्रोडक्टिव होती है, मन को थोड़ा बिजी रखती है, वो हमें खुशी देती है। इट कुड बी जस्ट लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट, कुकिंग, गार्डनिंग, एनीथिंग थोड़े समय के लिए जो मुझे अच्छा लगता है।
1: बहुत खूबसूरत।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है, पल्लव है, वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पल्लव है, मैं अहमदाबाद से हूँ और कल मैं अपने कॉलीग के साथ कुछ बात कर रहा था और एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से, हम दोनों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हुई उस वजह से वो बहुत जोर से मुझ पे चिल्लाने लगे, तो मैं क्या करूँ? ये एंगर मैनेजमेंट का किस्सा लग रहा है।
2: कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और सामने वाला थोड़ा हर्ट हो जाता है, भले हमारा इंटेंशन नहीं भी है। थोड़ा समय उन्हें ठंडा होने दे, बिकॉज अगर आप गर्म तवे पर भी अगर ठंडा पानी डालेंगे ना तो वो उछलता है। तो कभी कभी जब सामने वाला बहुत नाराज है, अपसेट है और हम समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि समझने के लिए भी मन थोड़ा शांत चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: सो एक दिन दो दिन का गैप डाले, और अगर उस बीच में गैप तो डालना है, द गैप इज टाइम का गैप तो डालना है, लेकिन उस टाइम के गैप में एक मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना। जितना समय हम उनसे बात नहीं कर रहे होते, मन में जरूर बात कर रहे होते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: और वो जो मन में बात कर रहे होते हैं, वो कई बार हमारी कॉन्वर्सेशन थोड़ी नेगेटिव हो जाती है।
1: उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्या जरूरत है, हर बार वो चिल्लाते हैं, जस्ट बिकॉज इज अ बॉस, वो कुछ भी बोल सकते हैं, ये नहीं सोचना है।
2: छोटी छोटी बातों में कैसे अपसेट हो जाते हैं, इतनी जोर के चिल्लाने की क्या बात थी, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर इतने सेंसिटिव है, इतने दिन हर्ट रहते हैं, ये चलता रहता है। ये गर्म तवे को और गर्म करने जैसा है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन तो उन तक जाएगा ना। इसीलिए अगर इफ यू रियली केयर अबाउट दैट रिलेशनशिप, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप टाइम तो दे रहे हैं लेकिन साथ साथ आपके थॉट्स और वाइब्रेशन हील करते हैं। ये चीज हमें समझनी है कि हीलिंग थॉट्स और वाइब्रेशन से होती है। जैसे हम किसी स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं मंदिर में, तो हमें सुकून अनुभव होता है कि नहीं? तो वहां का वाइब्रेशन ही तो सुकून दे रहा होता है। वो वाइब्रेशन वहां के आने वाले लोगों ने ही तो बनाया होता है। सब आते हैं, कोई वहां पर पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उससे एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है। अब वो जो व्यक्ति थोड़े से दर्द में है, व्हेन आई थिंक नाइस अबाउट देम, हम उनकी जो विशेषताएं हैं, जो क्वालिटीज हैं, जब भी उनकी स्मृति आए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव अबाउट देम, अगर हम अच्छा सोचते हैं, वो जल्दी हील होंगे। और हीलिंग होने के बाद ही, हीलिंग मना जब आपको लगता है थोड़े से नॉर्मल हो गए, तवा ठंडा हो गया है, तब जरूर बात करनी चाहिए। कभी कभी हम बात नहीं करते, वो मिसअंडरस्टैंडिंग गांठ रह जाती है, तो वो गांठ को सुलझाना भी जरूरी है। तो अपनी बात कहकर के उसको जल्दी ठीक करने में ही अच्छा है।
1: जी, जगजीत सिंह की बहुत प्यारी गजल है, उसमें वो कहते हैं कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। तो बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं कि एक बार गांठ लग गई तो बहुत समय लगता है उसको खुलने में, तो थोड़ा समय देना जरूरी है।
2: इसमें दो बातें हैं, एक बात ये जो आपने कही वो तो बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात है, गांठ हो तो उसको खोल लेना चाहिए। कभी कभी अगर रिश्ते बहुत स्ट्रांग हैं और आपको पता ही होता है कि ये जो हमारा मिसकम्युनिकेशन हुआ, ये ईगो के कारण हुआ, कुछ है ही नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे पता है कि आपकी मेरे प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, मेरी आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, उस मोमेंट में, हीट ऑफ द मोमेंट में वो आर्ग्यूमेंट हो गया, मैंने आपको कुछ कह दिया, आपने मुझे कुछ कह दिया, अब उसके अंदर बहुत ज्यादा उस गांठ को सुलझाने की जगह उस गांठ को तोड़ के फेंकने में अच्छा है।
1: भूल जाओ उसके बारे में,
2: क्योंकि वो कुछ नहीं था, वो एक ईगो क्लैश था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो मिसकम्युनिकेशन नहीं था। वो ऐसा नहीं है कि आपने मुझे गलत समझा, एक्चुअली हम एक दूसरे को समझते हैं, हमें पता है, लेकिन हम परफेक्ट नहीं है। तो उस समय किसी कारण से हमने कुछ ऐसा गलत बोल दिया, बट देन अगर अब हम फिर बैठेंगे ना उसको
1: सोचने के बारे में,
2: कार्ड खोलने के लिए, तो कई बार वो राय का
1: और उलझ जाता है, राय का पहाड़ बन जाता है। बिल्कुल सही कह रही है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Richie Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। कभी कभी ये भी होता है कि सामने वाला, अगर मैं ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं कि मुझे इस बात से ज़्यादा फर्क ना पड़ रहा हो कि सामने वाला क्या बोल रहा हो, मैं अपने मन में गीत गा रहा हूं, मैं अपने पे विचार पे कंट्रोल कर रहा हूं, तो सामने वाला कभी कभी चिढ़ के भी कह सकता है तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जो भी बोलता हूँ, तब क्या किया जाए?
2: अभी वो उनकी प्रॉब्लम है। नहीं, ये बात लेकिन बिल्कुल सही है, बिकॉज सी अ लॉट ऑफ टाइम पीपल आर ट्राइंग टू प्रोवोक अस। वो जब अपनी बहुत अपसेट होते हैं तो वो हमें इंसल्ट करके या क्रिटिसाइज करके थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम प्रोवोक हो जाते हैं तो उनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है
1: जी।
2: और अगर वो हमें नहीं कंट्रोल कर पाते,
1: हाँ।
2: अगर हम इंटरनली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, इट इज नॉट दैट आई डोंट वॉन्ट टू चेंज, इट इज जस्ट कि अगर आप गलत तरीके से बात करते हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं होती। वो मेरे मन की मास्टरी है, वो मेरा एफर्ट है, आई चूज टू स्टे काम। और ये हर फील्ड में होता है। आज क्रिकेट के फील्ड में कोई स्लेजिंग कर रहा है, आज ऑफिसर्स में कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, निंदा कर रहा है, आज कहीं पर कोई बॉस डांट रहा है, तो हमें अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ तो बिल्ड करनी पड़ेंगे ना। अगर हम वो बिल्ड नहीं करेंगे तो हम डिस्टर्ब ही होते रहेंगे। तो हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, आपकी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अब जब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर पाते और प्रोवोक नहीं कर पाते तो आप और अपसेट होते हैं, पर ये तो इमोशनली वीक हुआ ना, सामने वाला इमोशनली वीक हुआ, इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है।
1: तो ये सोचने के सामने वाला इमोशनली वीक है, वो बेचारा मन से बीमार है, और उसके प्रति पॉजिटिव सेंटिमेंट भेजिए और अपने आप को स्ट्रांग करिए।
2: पहले अपने को उसकी एनर्जी से डिटेक्ट

0: इंसल्ट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, जोर जोर से बात करता है, वो पोजीशन में बड़ा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब पोजीशन के पावर में बड़ा हो सकता है, पर इनर पावर में वो बहुत
1: वीक है,
0: सोल पावर में वो बहुत वीक है, नहीं तो वो बहुत काम से, डिग्निटी से, ग्रेस से बात करेगा। बात करें, बात ना करें ऐसा नहीं है, जो कहना है कहें, लेकिन ग्रेस डिग्निटी जरूरी है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: SHG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: देखो अगर अलार्म क्लॉक्स की फीलिंग्स होती ना तो आज वो बोलती व्हाई एम आई द विलन एवरी मॉर्निंग. नमस्ते, गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स जो अभी अभी शुरू हुआ है. यहाँ पर चाय थोड़ी सी कड़क होती है, ट्रैफिक थोड़ा सा ड्रामेटिक होता है और हमारा स्लीप स्केड्यूल जो है वो फुली गड़बड़ होता है. आज सुबह अगर तुम ऑफिस जा रहे हो, स्कूल ड्रॉप ऑफ कर रहे हो, यहाँ पर जूम का कैमरा ऑफ करके ऑस्कर विनिंग वर्क फ्रॉम होम परफॉर्मेंस दे रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अपने साथ में रखो. वैसे एक्सपैट लाइफ कमाल की होती है. इंडिया मम्मी पूछती है खाना खाया और यहाँ पर रिलेटिव्स पूछते हैं बेटा कॉस्को का मेंबरशिप लिया कि नहीं लिया. सो ग्रैब दैट कॉफी, चाय, प्रोटीन शेक या फिर तुम्हारा क्रिस्पी ब्रेकफास्ट, जो कुछ भी तुम्हें फंक्शनिंग ह्यूमन बनाता है वो सब कुछ ग्रैब करके बैठ जाओ यहाँ पर, क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग शुरू हो चुका है. यहाँ पर गॉसिप, गपशप, न्यूज अपडेट्स एंड मच मोर होने वाला है शुरू. और मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हूँ. फटाफट से तुम मुझे अपने साथ इंस्टा और एक्स पर भी रख सकते हो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472444. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट. गली में

0: बस तुम रहते हो।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम गुड इवनिंग।
3: हाय
4: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
4: पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गया ना
4: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात करो।
3: हेलो
4: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा। वे
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
4: मेरा, आपका तो मुर्गा बन गया है।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं,
5: से सॉरी
3: सॉरी।
5: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को
3: कुकड़ू गो।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब चलने वाले हम टाइम मशीन में, वूम वूम वूम। सबसे पहले 1497 एक्सप्लोरर जॉन कैबट रीच्ड ईस्टर्न कनाडा एंड बेसिकली सेड आई एम द फर्स्ट वन अराइविंग हियर। 1509 में हेनरी VIII बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। 1812 में नेपोलियन डिसाइडेड इनवेडिंग रशिया वाज अ ग्रेट आइडिया। 1948 में द बर्लिन ब्लॉकेड बिगन, वन ऑफ द कोल्ड वॉर्स बिगेस्ट स्टैंड ऑफ्स। And then fast forward to 2010, Wimbledon witnessed the longest tennis match ever. John Isner versus Nicholas Mahut. The match lasted 11 hours and 5 minutes over 3 days. Wow. And that's it for आज का history lesson with me Priscilla। मुझसे बातें करनी है तो मुझे follow कर लो। Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS। WhatsApp number है 9033 Mirchi, that's 9033647244। Stay tuned and stay hot।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: सवाल आया मेरे दिमाग में, व्हाट डू इंडिया एंड साउथ कोरिया हैव इन कॉमन टुडे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो द मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची वॉच इट।
1: एंड नो, नॉट जस्ट लव फॉर कोरियन गाइज, मैं तुम्हें एक फील गुड स्टोरी बताने वाली हूँ। रिमेम्बर लिटिल अनुष्का सेन फ्रॉम बालवीर? वेल, शी इज जस्ट अनलॉक्ड अ ब्रांड न्यू अचीवमेंट लेवल। अनुष्का हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू लीड अ साउथ कोरियन फिल्म कॉल्ड जेजू ओले, एंड ऑनेस्टली दैट्स pretty epic. From Indian television screens to leading Korean movie, talk about passport getting a workout. Anushka ka kehna hai there were language barriers on set, lekin everyone was so passionate about the project that they made it work. Which, by the way, is exactly how most desi families survive. Sab ke vichar alag alag hote hai, lekin sab ek hi goal rakhte hai ki hamare rishtedaron ke bachcho ko taane marne hai. एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। आई एब्सोल्युटली लव स्टोरीज लाइक दीज बिकॉज दे आर रिमाइंडर कि टैलेंट जो है ना, इट डजंट नीड सबटाइटल्स एंड इट डजंट हैव बाउंड्रीज। तो तुम मुंबई से होकर भी सोल में या न्यू जर्सी में जाकर अपना काम कर सकते हो। You can share your journey with me Insta or X पर। मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा number है 9033Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, Sunshine. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में एंड अब सुनने वाले हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स पर वेदर का हाल चाल. Right now we're sitting pretty at 61 degrees Fahrenheit. Clear skies हैं, लेकिन thanks to a bit of wind, it's actually making it feel like 58 degrees Fahrenheit. And good news ये है कि clear skies are sticking around all day. यानी कि आज अम्ब्रेला की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, कोई वेदर का ड्रामा नहीं होने वाला है. No surprise plot twist. In short, there is going to be none rain. Temperature will start around 60 degrees Fahrenheit this morning and climb all the way up to a gorgeous 83 degrees Fahrenheit this afternoon, and it'll feel warmer about 84 degrees Fahrenheit. So yes, it's one of those classic days where you leave home dressed for chai weather and return dressed for mango lassi ka weather. Rain lovers, sorry यार, आज के दिन we've got a dry day. पिछले 24 घंटों में हमने 4 millimeters की बरसात देखी, but the next 24 hours we'll have zero precipitation. And आज का high जो है, it's actually warmer than yesterday. कल maximum temperature गया था 71 degrees Fahrenheit तक, while today is aiming for a much more ambitious temperature. That's 83 degrees Fahrenheit. और अब बाहर जाते वक्त अपना sun protection SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना. Layer के player बनकर बाहर जाओ और अपने आप को हाइड्रेटेड रखो. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. मुझसे बातें करना चाहते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम फॉर मिर्ची आवक एट 3, यानी कि अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड क्विकली। सबसे पहले, न्यू बुक कॉल्ड रेजिम चेंज क्लेम्स दैट द यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस वंस सजेस्टेड इंडियन ट्रूप्स कुड बी यूज्ड इन अ यूक्रेन पीस कीपिंग रोल। अकॉर्डिंग टू द बुक, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टेडली लाफ्ड ऑफ द आइडिया, सेइंग इंडिया प्रोबेबली वुडंट बी इंटरेस्टेड इन फुटिंग द बिल। Number two, a tragic case from Pune continues to make headlines. Police investigating the death of businessman Ketan Agrawal says CCTV footage and a suspicious hoodie worn during extremely hot weather became important clues in the case. Authorities are continuing their investigation. And number three, actress Trisha Krishnan shared a birthday post for actor and Tamil Nadu Chief Minister Vijay, calling him the person who makes it all worth it. The internet, of course, immediately put on its detective hat and started decoding every emoji. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisila tumhare saath mein. Mujhe apne saath chipkaye rakho. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi. That is 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ओह गॉड, वन मोर।

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vilva la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं है मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम
2: बिल्कुल, से, बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहां रहा है
2: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस हैं उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा है मतलब
2: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
1: आपको से फोन मत करियो ना मैं इनबॉक्स बना दूंगा दिमाग खराब कर दिया
2: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर अरविंद जैन, फाउंडर ऑफ द यूएस बेस्ड एआई यूनिकॉर्न ग्लीन, रिसेंटली शेयर्ड अ प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक टेक ऑन अमेरिका। व्हाइल सम पीपल आर चूजिंग टू लीव द यूएस, ही बिलीव्स दे आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम अमेरिका इज स्टिल वेरी मच द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। उनका रीजनिंग है, इफ यू गॉट अ गुड आइडिया देर आर पीपल विलिंग टू इन्वेस्ट इन इट, सपोर्ट इट एंड हेल्प टर्न इट into something real. And honestly, that hits differently for so many of us in the Desi community. Most people come to the US with suitcases, dreams, and approximately 47 packets of snacks. The dream wasn't always easy, but stories like these remind us why people keep betting on possibilities. Also, can we appreciate that some of the world's biggest success stories started with nothing more than a crazy idea and someone saying, "Theek hai, let's try it." So if you've been sitting on a business idea, a passion project, or even that side hustle you've been talking about since 2022, maybe this is your sign. And if you're building something cool, let me know. Main usko shout out dene wali hu Mirchi Mornings par. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। एंड इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर हैप्पी वाला बर्थडे टुडे ऑन June 24th, देन फर्स्ट ऑफ ऑल जन्मदिन मुबारक हो। मे योर कॉफी बी स्ट्रॉन्ग एंड योर वाईफाई बी स्टेबल। एंड नाउ लेट्स चेक आउट विच फेमस सेलिब्रिटी इज ब्लोइंग आउट कैंडल्स विथ यू टुडे। लीडिंग द बर्थडे स्क्वाड इज फुटबॉल लेजेंड नन अदर देन लायनल मेसी। सो इफ टुडे इज योर बिग डे, टेक्निकली यू आर शेयरिंग इट विथ वन ऑफ द GOATs, वन ऑफ द GOAT. Also celebrating in the hilarious, also celebrating today is the hilarious Mindy Kaling. And then we've got Solange Knowles and Mick Fleetwood and the legendary Jeff Beck. And from my binge watch crowd, today also is the birthday of Ian Glen, Minka Kelly, Beanie Fletstein and Erin Moriarty. So agar aaj ke din tum is dharti par aaye the na, you are in excellent company. Athletes hain, actors hain, musicians hain, comedians hain. Clearly, it's absolutely not an average day to have a birthday. So, aaj agar tum celebrate kare with a cake, cupcake, gulab jamun or even an extra large chai, make today count, kyunki aaj calories count nahi hoti. Apne birthday shoutouts mujhe bhej sakte ho. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That's MIRCHIPRIS. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Well, I'll stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो जी, टाइम फॉर योर गोल्ड एंड सिल्वर एट अपडेट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला.
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,320 $4,320 पटरे हैं उसके साथ. आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं इस फादर्स डे की सिलेक्शन पे. जब 22 कैरेट गोल्ड मेंस ब्रेसलेट, 22 कैरेट गोल्ड की चेन, 22 कैरेट गोल्ड के मेंस सिक्की कड़ा या प्लैटिनम की चेन्स और प्लैटिनम के मेंस बैंड. आइए राज ज्वेल्स की खूबसूरत सी सिलेक्शन देखने के लिए, जिसमें आप आज 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी अप्रूव होने पे घर ले जा सकते हैं और 9 किस्तों में राज ज्वेल्स को पैसे दे सकते हैं फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए. मिलके राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग.
1: एंड दैट्स इट फॉर योर गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझसे बातें करनी है तो कनेक्ट करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला एंड इट्स टाइम फॉर मिर्ची आवर का 3, यानी कि 3 अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले यूके पॉलिटिशियन नाइजल फराज सेज दैट इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, माइग्रेशन टू ब्रिटेन कुड बिकम मोर लिमिटेड ओवरऑल, बट हाईली स्किल्ड इंडियंस वुड स्टिल बी वेलकम्ड। And number two, per WhatsApp's new global CEO Kunal Shah revealed that at just 14 years old, he worked as a delivery boy, sold mehndi cones, taught computer skills, and even sold CDs to help support his family after tough financial times. And finally, FIFA World Cup say Cristiano Ronaldo has done it again. The Portugal captain has become the first footballer ever to score in 6 different FIFA World Cups. And that's it for Mirchi Hour Ka 3. Main hoon Prisila, हमारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्सपर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La
1: virba la burga.
0: Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे,
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन,
2: भाई ये नंबर क्या है, तू बता तू क्यों लाइन में आ रहा
4: है? मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे तेरा कुछ जा रहा
2: है,
4: या बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ूकू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड नाउ वेलकम टू राशि जोन, जहाँ पर हम बातें करने वाले हैं आज का दिन कैसा जाने वाला है.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: एरी, सबसे पहले योर गट फीलिंग इज लाउडर देन योर चैट टुडे. अगर सिक्स सेंस कुछ कह रही है तो लिसन टू इट. लकी कलर इज क्रिम्सन रेड. लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, सोशल बटरफ्लाई, फुली चार्ज्ड हो आज. गेट आउट, मीट पीपल, नेटवर्क, मिंगल, शाइन. जो लोग तुमको एक्स्ट्रा समझे, दैट इज देयर प्रॉब्लम. लकी कलर इज सनसेट येलो. लकी नंबर इज 28. जेमिनी यानी मिथुन राशि, पीपल कांट रीड योर माइंड बॉस. एक्सपेक्टेशंस को सबटाइटल्स के साथ एक्सप्लेन करो आज के दिन. लकी कलर इज अक्वा ब्लू. लकी नंबर इज 5. कैंसर यानी कर्क राशि, गुड न्यूज इज स्पीडिंग टुवर्ड्स यू फास्टर देन एन अमेज़न प्राइम package. A friend's action may restore your faith in humanity. Lucky color is pearl white. Lucky number is 22. Leo yani ki siha rashi, opportunity knocks. Don't just answer. Open the door, offer chai and invite it in. Hesitation is not today's vibe. Lucky color is gold. Lucky number is 9. Virgo yani kanya rashi, that dream you've been postponing, stop treating it like laundry. Today is the day to focus on what truly inspires you. Lucky color is forest green. Lucky number is 31. And that's it for your Rashi Zone Part 1. Part 2 lekar thodi si der mein wapas aaungi on Mirchi Mornings. Meanwhile, you go and check out my Instagram and X handles. Dono jagah pe mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp pe mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: और बस दोस्तों, जस्ट लाइक द लास्ट सिप ऑफ चाय, दैट समहाउ द बेस्ट सिप ऑफ चाय, टुडेज एडिशन ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स हैज कम टू एन एंड। लेकिन बिफोर प्रिसिला लीव्स यू, लेट मी टेल यू अ स्टोरी अबाउट डेडिकेशन। इंडियाज प्रेस्टिजियस पद्मा अवार्ड्स रिसेंटली ऑनर्ड सम इनक्रेडिबल टैलेंट्स। लेजेंडरी एक्टर मामूठी रिसीव्ड द पद्म भूषण फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। He's worked for 5 decades and he's made 400 films and still he's inspiring generations. That's not a career, yaar. That's like a master class in consistency. And beloved singer Alka Yagnik ji was also honored with Padma Bhushan. Despite facing some health challenges and being on a break from the industry, her voice continues to live rent-free in the hearts of millions of us. And joining the celebration was actor R. Madhavan, who received the Padma Shri. इससे हमें तो ये सीखने को मिलता है कि ग्रेट थिंग्स डोंट हैपन ओवरनाइट, दे हैपन वन डे वन एफर्ट एंड वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। एंड दैट्स माय टाइम। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर मॉर्निंग्स विद मी, बोले तो प्रिसिला, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी के लिए टाटा बाय बाय है, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए यू स्टे काइंड, स्टे क्यूरियस, खाओ पियो ऐश करो। और अगर मुझे मिस करोगे तो एक्स और इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर 9033 Mirchi, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

अरे हम आए और आप चल दिए, ये क्या बात हुई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आन मिलो सजना फिल्म का ये गाना, और मैं सोच रही थी कि इस तरह के कैसे नाम होते थे ना पुरानी फिल्मों के, आन मिलो सजना, आई मिलन की बेला, आए दिन बहार के, आप आए बहार आई, आया सावन झूम के, झूमते गाते मस्त मोहब्बत में रहते थे ये लोग। और आजकल की फिल्में एनिमल, धुरंधर, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, टाइम टाइम की बात होती है यार। उस टाइम वो चलता था, इस टाइम ये चल रहा है। और आने जाने पे मुझे एक लाइन याद आई, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अभी मैं थोड़ी भीड़ कम करती हूँ, ब्रेक लेती हूँ। ऑफ कोर्स ये ब्यूटीफुल गाना सुनेंगे हम पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, गुड इवनिंग। बैंक से बोल रहे हो ना, हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: सब्जी बेच रहे है या लोन के लिए?
4: पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गए ना
4: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा, सारे दांत बात कर दो। मैडम अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
3: मारूंगी ना।
5: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: है।
4: मैडम आपका तो मुर्गा बन गया है।
5: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं।
5: से सॉरी।
3: I'm sorry नवे, I'm sorry।
5: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को।
3: कुकड़ो को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची। It's hot।
0: पुरानी जीन्स विद चारू only on

एक ना पुराना गाना है जो जब भी किसी रेडियो स्टेशन पे चलता है तो रेडियो स्टेशन पे काम करने वाले लोगों को थोड़ी सी घबराहट दे देता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हमारे ना क्या होता है कि रेडियो पे गाने चलते हैं, एड्स चलते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। जहाँ पे कुछ साइलेंस आ जाती है ना, एकदम सन्नाटा कुछ हो जाता है, उसे हम कहते हैं डेड एयर, जो नहीं होनी चाहिए। और जिस गाने की मैं बात कर रही हूँ ना, रजिया सुल्तान का ए दिले नादान, उसमें टुवर्ड्स एंड जहाँ पे लिरिक्स आते हैं, जिंदगी जैसे खोई खोई है, हैरा हैरा है, उसके बाद 4-5 सेकंड का ऐसे पॉज है, साइलेंस, फिर वहां से गाना पिक करता है, ये जमीन चुप है, आसमान चुप है। तो उन लिरिक्स को वजन देने के लिए वो साइलेंस, वो पॉज वहां पे डाला गया है। लेकिन इनकी तो क्रिएटिविटी हो गई, हमारी तो मौत आ जाती कि है रेडियो बंद हो गया क्या, गाना क्यों नहीं चल रहा, आवाज क्यों नहीं आ रही है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: नहीं।
1: मजा आया क्योंकि एक और पुराना गाना रीमेक बनकर चर्चा में आया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना है 1981 की फिल्म अरमान का दिस सुपरहिट सॉन्ग
2: रंबा हो
1: डिस्को वाला गाना है। बताने की बात नहीं है कि बप्पी लहरी साहब ने इसे कंपोज किया है। श्याम लाल बाबू राय कॉमनली नोन एज इंदिवर साहब, उन्होंने लिखा है एंड गाया है। क्या गाया है उषा उत्थुप जी ने। वैसे ये गाना सैंपल किया गया है, एक्चुअली कॉपी किया गया है बोल सकते हैं, फ्रॉम अ 1979 सुपरहिट सॉन्ग एक फ्रेंच म्यूजिकल ग्रुप ने जो रिलीज किया था, के सेरा मी विदा, ये वाला। वैसे रामबा हो में ना 70s के एक अमेरिकन गाने का म्यूजिक भी थोड़ा सा लिया गया है, द सॉन्ग कॉल्ड आई फील लव बाय डोना समर्स, जिन्हें क्वीन ऑफ डिस्को भी कहा जाता था। खैर हम अपने वाले पे आते हैं, आप इस गाने का वीडियो देखेंगे ना तो बहुत ही फेस्टिव सेलिब्रेटरी कलरफुल सा वाइब है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली।

ये गाना मेनली लता मंगेशकर जी एंड SP बालासुब्रमण्यम जी ने गाया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन इसमें दो आवाजें और हैं, शैलेंद्र सिंह एंड उषा मंगेशकर जी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उषा मंगेशकर जी ने ज्यादा गाने गाए नहीं, हिंदी फिल्मों में नहीं गाए, लेकिन मराठी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो शी इज अ लेजेंड। इनफैक्ट इस साल उन्हें फिल्म फेयर मराठी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। और भी कई भाषाओं में उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं। कुछ हिंदी फिल्मी गानों के लिए भी उनको अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला था, जैसे कि 1977 की इनकार फिल्म का ये गाना, कंपोज्ड बाय राजेश रोशन, रिटन बाय मजरू सुल्तानपुरी एंड सन बाय उषा मंगेशकर जी। जी सुनते हैं यहाँ पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

झूठा वादा करने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हाँ तो वादा तोड़ने वाले बेवफा आशिक के नाम अर्ज किया है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। दाग देलवी साहब का शेर है ये। अच्छा, पूनम अलाबादी शायर लिखते हैं, बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो मिस्टर विपुल, मैं से बोल रहा हूँ। आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, आपके मोबाइल का इनबॉक्स। तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
3: इनबॉक्स चाहिए? इनबॉक्स कैसा मतलब?
4: मैं आपको वही समझा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है, अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना। तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा। अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे। तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ, आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
3: नहीं, बात तो सुनो भाई साहब।
4: हाँ बताइए।
3: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा, वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना।
4: नहीं, वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
3: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
4: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों? एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं, आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
3: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना। अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
4: बिल्कुल,
3: से कम मुझे
4: बिल्कुल
3: मालूम
4: से, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: जा कहाँ रहा है?
4: नहीं, वो जा कहाँ रहा है, जा यही रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए। अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे, उसको पढ़ेंगे सही से।
3: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको?
4: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉनवेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
3: यार क्या बात कर रहा हूँ, मतलब
4: नॉनवेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें? बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
3: चल
4: नहीं नहीं, आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे, मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए। सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
3: बिल्कुल
4: क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
3: हेलो
4: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
3: आपको से फोन मत करो, मैं इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
4: क्या क्या क्या क्या यार, बात सुनिए आप मेरी। मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: कैलेंडर मई तो चला किचन के अंदर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड इफ यू नो ये कैलेंडर कौन है, ये मिस्टर इंडिया वाला कैलेंडर है। 1987 में ये आइकॉनिक मूवी रिलीज हुई थी एंड दिस किरदार कैलेंडर क्या प्ले किया था सतीश कौशिक साहब ने। और सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि कहां से आया था ये किरदार,
1: कैसे कैलेंडर बना। वो मेरे फादर के डीलर थे, वो तकिया कलाम था उनका, कि वो कैलेंडर बीच बीच में बोलते थे, पंडित जी क्या बात है, तीन पेटियां आई और तीन पेटियों में से कैलेंडर एक पेटी तो खराब निकली, अभी 2 लाख का बाल कैलेंडर खराब हो गया, तो कैलेंडर बीच में बोलते, कैलेंडर वर्ड वहां से आया। एंड दैट इज हाउ कैलेंडर्स नेम वॉज दिस थिंग। फर्स्ट डे शूटिंग आई रिमेम्बर कि इसको थोड़ा सा फेमिनिन बनाना है, और वो परचून की दुकान पे सीन था, एंड एवरीबॉडी वॉज इन लाफ्टर व्हेन आई डिड दैट, यू नो।
0: और क्या ही डायलॉग्स लिखे हैं सलीम जावेद ने, याद है इसमें अनिल कपूर का किरदार अरुण भैया इनसे पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम कैलेंडर क्यों रखा, तो वो बोलते हैं कि जी वो इंग्लिश में कुछ नाम रखना चाहते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

काश जैसा इनके साथ हुआ हमारे साथ भी हो जाए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ माला माल फिल्म के नसीरुद्दीन शाह साहब के किरदार की। ये 1988 की फिल्म है माला माल, विच इज बेस्ड ऑन 1985 की हॉलीवुड फिल्म ब्रूस्टर्स मिलियंस, जो अगेन एक नॉवल पर बेस्ड है। इस सब्जेक्ट पे कुछ 6 फिल्में बन चुकी हैं। तो अपने वाले की बात करें तो इसमें ये होता है कि एक लुखे लफंगे गरीब से लड़के को अचानक से उसके करोड़पति दादाजी की दौलत मिल जाती है, 330 करोड़ रुपए। लेकिन शर्त यह है कि उसको 30 दिन में 30 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, तभी उसको 300 करोड़ मिलेंगे। अभी इस चक्कर में क्या क्या होता है, इट इज अ फन वॉच। मतलब काफी खामियां है फिल्म में, लेकिन तो भी एक बार तो देखे जा सकती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ नसीरुद्दीन शाह साहब एक्टिंग। साथ में सतीश शाह साहब भी हैं, वो भी मजेदार हैं। तो कभी मौका मिले तो देखिएगा। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

तो मैंने देखी 1979 की फिल्म नौकर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में है संजीव कुमार साहब, जया भादुरी एंड महमूद। अब एक्टर्स इस कैलिबर के हैं तो परफॉर्मेंसेस तो अच्छी होंगी। यस, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, इसीलिए फिल्म एंटरटेनिंग है। तो सीन कुछ यूं होता है कि संजीव कुमार साहब एक सिंगल फादर प्ले कर रहे हैं जो दूसरी शादी नहीं करना चाहते, इस डर से कि उनकी जो छोटी सी बेटी है उसकी स्टेप मदर उसको ढंग से ट्रीट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन उनकी फैमिली उनको शादी करने के लिए कन्विंस करती है। अब जब ये लड़की देखने जाते हैं तब क्या चक्कर चलता है मालिक नौकर का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हो जाता है। और एक्चुअली आई वाज लाइकिंग जया भादुरी जी की परफॉर्मेंस। व्हेन आई रेड अबाउट इट आई गॉट टू नो कि इस फिल्म में उनको अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो मेरी तरफ से एक फन लाइट मूवी है ये, जिसे आप देख सकते हैं। थोड़ा ड्रामा भी है क्योंकि इसमें ललिता पवार जी भी हैं, बट देख सकते हो, रेकमेंडेड। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड विटियस्ट एक्टर्स इंडियन सिनेमा के थे फारूक शेख साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो उनकी शुरुआती फिल्मों में से थी सुपरहिट फिल्म नूरी, जिससे वो और पूनम ढिल्लो दोनों बहुत पॉपुलर हुए। पूनम ढिल्लो की आई थिंक वो दूसरी फिल्म थी। तो उनसे ना बहुत सालों बाद एक इंटरव्यू में पूछा गया कि नूरी फिल्म से पूनम ढिल्लो के पैर जो है वो तो फिल्म इंडस्ट्री में जम गए, लेकिन ये थोड़े से फिसल गए क्योंकि उनका करियर उतना नहीं चला था इस फिल्म के बाद। तो इस सवाल के जवाब में सुनिए फारूक शेख साहब ने क्या कहा।
1: दरअसल नूरी के बाद जो है मैंने पूनम से पूछ लिया था कि वो अपने जूते कहाँ बनवाती हैं ताकि मेरे भी पैर खूब जम जाएं। तो दो साल तक मैंने नूरी के बाद कोई फिल्म साइन नहीं की, मैं इसी की तलाश में था कि कहाँ से बनवाऊं। फिर दो साल के बाद मैंने सई परांजपे के साथ चश्मे बद्दूर की, जो खुशकिस्मती से बहुत चली और मकबूल हुई, और उसके बाद फिर उमराव जान की वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर जो है पूनम जी अपनी जगह जमी रही और मैं अपनी जगह चलता रहा।
0: भाई मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ फारूक शेख साहब की। मैं तीन फिल्में उनकी सजेस्ट करूँ आपको देखने को। ये फिल्में हैं पीछा करो, किसी से ना कहना और अब आएगा मजा। मजा आ जाएगा आपको ये फिल्में देखकर। खैर यहाँ पर हम नूरी फिल्म का गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची
1: हेलो।
2: हाय, ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही हैं
1: आप? कौन बोल रही हैं?
3: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
1: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
3: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
1: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
3: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
1: ये तो वहाँ से मेरे पास, अरे यार जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे,
3: हो सकता है, हो सकता है।
2: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
3: हेलो।
1: हेलो,
3: कौन बोल रही? अरे भाई यार मैं लड़की के चक्कर में, यार कहां से आ रहे हो यार बीच में, मैं मेरी लाइन, मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा हूँ, लाइन में आ रहा हूँ, अच्छा एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे, हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरे तेरा कुछ जा रहा
1: है,
3: बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है तो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
2: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देवानंद साहब को मुच्छी लगाने का पता नहीं क्या शौक चढ़ा था कुछ फिल्मों में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1975 की फिल्म वॉरंट का ये गाना, जिसमें देवानंद साहब पे जो मूछों वाला लुक है ना, वो somehow मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। बहुत ही क्लाउनिश कैरिकेचरिश लग रहे हैं वो। और मुझे हैरानी है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि देवानंद साहब को ना मूछे लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उनको अपना क्लीन शेवन लुक पसंद था, और उनको नकली मूछे लगाना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए किसी रोल के लिए अगर मूछ चाहिए भी होती थी तो वो अपनी उगा लेते थे। लेकिन ये वाले गाने में और एक और गाना था गैम्बलर फिल्म का, दोनों में जो मूछें उनकी दिख रही है ना, वो नकली दिख रही हैं। इसमें तो खास करके जैसे वो चाचा चौधरी की मूछ लगी हो बिल्कुल ऐसी लग रही है। खैर कई बार हो जाते हैं गूफ अप, वो क्या बोलते हैं, फैशन फॉपा, फैशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। द फैक्ट रिमेन्स दैट देवानंद साहब वॉज एक्सट्रीमली चार्मिंग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Pirani Jeans with Charu, only on

कई साल पहले यानी कि 1929 में गुजरात के एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और क्योंकि परिवार में जय श्री कृष्णा होता रहता था, बच्चे का नाम जयकिशन रख दिया गया। जी मैं बात कर रही हूँ शंकर जयकिशन वाले जयकिशन की। शंकर जयकिशन वो जोड़ी, वो डुओ जिसने हिंदी फिल्म संगीत को वैसा बनाया जैसा कि हम उसे जानते हैं। इनके म्यूजिक से पहले ना फिल्मी गाने फिल्मों में फिलर्स के जैसे इस्तेमाल किए जाते थे। इन्होंने वो गाने बनाने शुरू किए जो पार्ट ऑफ द स्टोरी थे। इन्होंने गानों में ऑर्केस्ट्रा का मैसिव इस्तेमाल करना शुरू किया और आने वाले म्यूजिक कम्पोजर्स के लिए एक मिसाल बन गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर पुरानी जीन्स विद चारों।

इस गाने को ना कहीं पर हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल कहा गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म में धर्मेंद्र के कैमियो रोल के बारे में भी ऐसा ही कुछ कहा गया था, हॉन्टिंग लैक ऑफ प्रेजेंस, मतलब इस फिल्म में उनका किरदार था भी और नहीं भी, क्योंकि वो वहीदा रहमान के किरदार के पास्ट का हिस्सा है। ये गाना भी एक्चुअली वहीदा रहमान और धर्मेंद्र पर ही पिक्चराइज्ड है, लेकिन धर्मेंद्र का कभी भी फेस नहीं दिखाया गया है। अलग अलग एंगल से उनको दिखाया गया है, उनकी आवाज सुनाई गई है, लेकिन फेस ठीक से नहीं दिखाया गया है। आपने फिल्म देखी है तो आपको पता है क्यों, नहीं देखी है तो देख लो। और एक्चुअली धर्मेंद्र साहब कितने काइंड हार्टेड थे या सिक्योर थे अपने करियर में, उस टाइम वो बहुत बड़े स्टार थे। और दूसरी तरफ फिल्म के मेन हीरो हम कह सकते हैं राजेश खन्ना, वो नए नए थे, तो भी धर्मेंद्र ने उनके साथ इस तरह का ये कैमियो रोल निभाया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: She is definitely on a roll.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप. और भाई अभी तक अगर आपने इम्तियाज अली डायरेक्टोरियल मैं वापस आऊंगा नहीं देखी, देन प्लीज मूवी थिएटर से हटने के पहले एक्सपीरियंस कर लीजिए. एंड आई एम श्योर उसके बाद इस बंदी के बारे में जो भी बातें मैं कर रही हूँ यू विल अग्री टू एवरी सिंगल बिट ऑफ इट. सो आई एम टॉकिंग अबाउट शर्वरी, जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में अपना काम शुरू किया था. प्यार का पंचनामा 2, बाजीराव मस्तानी, सोनू की टिटू की स्वीटी, इन सारी फिल्मों में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, जिसके बाद एक्टिंग डेब्यू किया विद द फॉरगॉटन आर्मी वेब सीरीज, उसके बाद बंटी और बबली 2, एंड फाइनली साल 2024 उनके करियर का गेम चेंजिंग ईयर भी बना विद द मूवी मुंजिया. बाकी शर्वरी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डायरेक्टर लव रंजन जो हैं वो अपनी अगली फिल्म में कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट इनको कास्ट करना चाहते हैं. ऑल्दो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ बट थिंग्स आर डेफिनेटली लुकिंग पॉजिटिव. एंड शर्वरी इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो भाई YRF स्पाई यूनिवर्स की अल्फा में भी नजर आने वाली है, सूरज बरजातिया की ये प्रेम मोल लिया में भी नजर आने वाली है. तो भाई बिना अच्छा काम किए इस तरीके की फिल्में तो किसी को मिलती नहीं ना. दैट्स व्हाई आई सेड शी इज डेफिनेटली ऑन अ रोल. मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga.
1: La vieja la burga. Energy, burga. Hello.
2: Hello, Mr. Vipul, ma'am. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे
1: इनबॉक्स चाहिए इनबॉक्स कैसा मतलब
2: मैं आपको वही समझा रहा हूँ एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ ठीक है सर
1: नहीं बात तो सुनो भाई साहब
2: हाँ बताइए
1: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना
2: वो हम खींच लेंगे आप उसकी फिक्र मत करिए
1: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे
2: मैं कुछ भी करूं यार आप ज्यादा बहस करते क्यों एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं
1: बहस वाली बात नहीं मतलब मैं खुद मालूम तो करूं ना अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
2: बिल्कुल,
1: से कम मुझे
2: बिल्कुल
1: से,
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जा कहां रहा है
2: नहीं वो जा कहां रहा है जा यहीं रहा है आपकी कंपनी में जा रहा है और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए अब उसमें आपको टेंशन क्या है हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से
1: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें मैं ऐसे किस तरह से दे दूं उसको
2: वैसे आप बुरा मत मानना आपके ये मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें
1: यार क्या बात कर रहा
2: हूं
1: मतलब
2: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए यार आपने उसमें बेकार की बातें कर रहे हैं आप कंपनी को जरूरत है क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उसपे मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए मेरी बात सुनिए
1: चल
2: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे मेरे हाथ में है रुकिए रुकिए सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी आपके बर्तन आपके कपड़े तक उतरवा सकती है
1: बिल्कुल
2: क्या बात कर रहे हैं मेरी बात सुनिए आप पूरी हेलो
1: हेलो
2: हेलो भाई साहब आपने फोन काट दिया यार इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं आप फोन काट रहे हैं यार
1: आपको आपको से फोन मत करियो मैं इनबॉक्स बना दूंगा खराब कर
2: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी मैं आपसे सिर्फ एक बात एक बार विपुल मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा तुम रेडियो मिर्ची पे हो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। जून का महीना बड़े ही खुशहाल तरीके से कॉमिक स्टेट में खत्म होने वाला है, बिकॉज वेलकम टू द जंगल इज रिलीजिंग नो बाबू मोरशाय। सो ये होने वाली है अब तक की बिगेस्ट मल्टी स्टारर मूवी फ्रॉम द हिंदी सिनेमा, और फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जितने भी एग्जिबिटर्स हैं उनसे मेजर शोज मांगे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मूवी, एंड दैट इज वाई वेलकम टू द जंगल इज गोना हैव द वाइडेस्ट रिलीज अक्रॉस इंडिया। वैसे पता ना हो तो बता दूं, फिल्म एक्चुअली 26th ऑफ जून को रिलीज होने वाली थी, बट अब मेकर्स ने इसके पेड प्रीव्यूज 25 तारीख को भी खोल रखे हैं, जिसकी एडवांस बुकिंग ऑलरेडी चालू है। मैंने तो अपनी टिकट करा ली, आपका क्या प्लान है? बेबी डू और डाई ये अपकमिंग फिल्म है जिसका ट्रेलर इज आउट एंड ट्रेंडिंग। हुमा कुरैशी इस मूवी में एक डेफ एंड म्यूट कैरेक्टर प्ले कर रही है, बेसिकली एक असैसिन प्ले कर रही है, विच इज सेट टू रिलीज ऑन द 3rd of July इन थिएटर्स। फिल्म को डायरेक्ट किया है नचिकेत सामंत ने, विच ऑल्सो स्टार्स सिकंदर खेर, चंकी पांडे एंड रचित सिंह जैसे एक्टर्स। वैसे इस मूवी का अल्फा के साथ काफी तगड़ा क्लैश होने वाला है। स्वानंद किरकिरे रीयूनाइट कर रहे हैं डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ उनकी डेब्यू सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो में। माइंड यू, इस सीरीज को वो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं बट इस बार प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें एक्टिंग करते भी नजर आएंगे। सो बेसिकली इस सीरीज में एक रेट्रो मेलोडी क्रिएट की गई है जिसको कंपोज किया है शांतनु मोइत्रा ने और आवाज दी है श्रेया घोषाल ने, एंड इज पिक्चराइज्ड ऑन मोना सिंह। बाकी अविनाश अरुण डायरेक्टोरियल ये सीरीज 3rd of July से हॉटस्टार पे स्ट्रीम करेगी, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मोशाय, मैं तो फिल्मी गेम खेलने की बात कर रही थी। आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? डर्टी माइंड। चलिए चलिए चलिए, अब दिमाग को वापस ट्रैक पे लाते हुए आपको याद दिला दूं, इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्मची। सो बेसिकली यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इंस्टा डीएम में जाके अपना नंबर भेजने के लिए, ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। तो आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं अनुपमा जी। सबसे पहले बताना चाहूंगी मैम कि आज इस गेम की शुरुआत मैंने थोड़े पुराने जमाने की फिल्मों से की है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। तो तीन भाई हैं जो बचपन में बिछड़ जाते हैं और फिर साथ आते हैं। इनका एक गाना है कि एक जगह जब जमा हो तीनों।
3: अमर अकबर एंथनी।
0: क्या बात है। अमर अकबर एंथनी में एक गाना है जिसमें एक हीरो जो है वो अंडे के अंदर बैठ के एंट्री मारता है।
3: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस।
0: क्या बात है, कौन है ये?
3: अमिताभ बच्चन।
0: बहुत बढ़िया। अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो और उनकी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते थे।
3: सिलसिला।
0: बहुत बढ़िया। सिलसिला में चांदनी कौन है?
3: मेरी फेवरेट रेखा।
0: ओहो, रेखा की किस फिल्म में उनका बेटा एलियन से कांटेक्ट करता है?
3: कोई मिल गया।
0: वाह, कोई मिल गया में एलियन किसको सुपर पावर देता है?
3: वो उसको देता है, ऋतिक रोशन, रोहित को।
0: बहुत बढ़िया। ऋतिक रोशन किस फिल्म में पिंक कलर का फोन यूज करते हैं?
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिलों में अपनी बेताबियां कौन लेकर घूम रहा है?
3: फरहान अख्तर।
0: फरहान अख्तर किस फिल्म में खुद को ही कॉल करते हैं?
3: वो यार कौन सी थी कॉलिंग।
0: हाँ।
3: कार्तिक कॉलिंग का।
0: बहुत बढ़िया। कार्तिक कॉलिंग। कार्तिक में कार्तिक को किससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है?
3: बस यही नहीं पता मुझे।
0: Never mind. बट इतना मस्त जो गेम खेला है, मुझे लगा था कि यहाँ तक मैं आप कई बार अटकेंगे, बट एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। दैट इज ब्रिलियंट मैम।
3: क्योंकि मैं आपको सुनती हूँ ना।
0: हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। तो चलिए, इतना ब्रिलियंस जो आपने दिखाया है उसके लिए ये टैग भी बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई, हमें आज की अपनी पहली मिर्ची फिल्मची मिल चुकी है। इसके आगे का गेम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची का।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म जी गेम की बात कर रही थी, आप कहाँ जा रहे हो यार? चलिए वापस ट्रैक पे आइए। सो बेसिकली इट्स टाइम कि आपके अंदर के फिल्मची कीड़े को जगाया जाए। हर दिन मैं ये मिर्ची फिल्मची ढूंढने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहली फिल्मची आज जो हमें मिली है वो है अनुपमा मैम, जिन्होंने इस गेम की शुरुआत की थी। अब आगे इस गेम को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है राज। क्या तैयार है आप?
3: बिल्कुल।
0: ओके, तो कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में कार्तिक को किससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है?
3: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका पादुकोण किस फिल्म में झूमर के नीचे मर जाती हैं?
3: ओम शांति ओम।
0: ओम शांति ओम में भागो ये वाला डायलॉग किसका है?
3: शाहरुख खान जो भागो बोलता है डाकू बन के। हाँ,
0: बिल्कुल सही पकड़े हैं। शाहरुख खान किस फिल्म में रेडियो जॉकी बने?
3: ये दिल से।
0: बहुत बढ़िया। दिल से में उनकी शादी किससे तय होती है?
3: प्रीति जिंटा।
0: प्रीति जिंटा की फिल्म जिसमें उनको 12:45 बजे आइसक्रीम खाने का मन होता है।
3: सलाम नमस्ते।
0: बहुत बढ़िया। सलाम नमस्ते में उनका फ्लैटमेट कौन है?
3: सैफ अली खान।
0: सैफ अली खान किस फिल्म में प्रोफेसर के रूप में टेररिस्ट हैं?
3: कुर्बान।
0: कुर्बान में अपना दिल उनके ऊपर कौन कुर्बान कर देता है?
3: उनकी वाइफ करीना कपूर।
0: करीना किस फिल्म में चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई?
3: कभी खुशी कभी गम।
0: बहुत बढ़िया। कभी खुशी कभी गम में स्टूल पे चढ़ के अपने पति का टाई कौन ठीक करता है?
3: जया बच्चन।
0: बहुत ही बढ़िया सर, क्या बात है। आज यहाँ तक ही हमारे सवालों का सिलसिला था, बट आपने हर सवाल का जवाब बहुत ही मस्त दिया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
3: गुड, ग्रेट। आपसे बात करके और ग्रेट हो रहे हैं।
0: अरे अरे, ग्रेटनेस तो आपकी है जो आप इतनी तारीफ भी कर देते हैं। चलिए फिर इसी बात पे, जो अच्छा गेम खेला है आपको ये टैग तो देना बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो आपके अंदर के इस फिल्मची को ढूंढने का सिलसिला कल फिर से लेकर आऊंगी, लेकिन अभी बाकी की फिल्मी बातें करेंगे ना यार। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: Energy. Busca bala, busca bala, saca bala. É a bala. Burga, burga. Na vida, bala, burga.
1: Energy, burga. Hello.
2: Oh, madam, good evening.
1: Hi.
2: Bank se bol le ho na, hamari nayi scheme hai ye. Madam, taazi scheme hai, badhiya scheme hai. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम
1: है। तो सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
2: पहले सब्जी बेचता था।
1: अगर अगली बार फोन आ गया ना।
2: मैडम तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत बात कर।
1: हेलो
2: मैडम, अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा वे।
1: मारूंगी ना।
3: प्रीति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया।
2: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
3: प्रीति, ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं एक बार दिल्ली को सुना दूं?
1: नहीं,
3: से सॉरी
1: सॉरी नवीन, आई एम सॉरी।
3: प्यार से बोल दीजिए कुकड़ो को
1: कुकड़ू गो।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: इनकी परफॉर्मेंस से मेन कैरेक्टर को भी सेल्फ डाउट हो जाता है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मोशाय, मैं उन साइड कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ जिनके बिना एक फिल्म अधूरी है, और इनकी परफॉर्मेंसेस इस लेवल की रही हैं कि भैया ऑडियंस ने मेन कैरेक्टर को भी उतना प्यार ना दिया हो इन द फिल्म जितना इन साइड कैरेक्टर्स को मिल गया। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही पांच कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हमने हेरा फेरी से बाबू राव गणपत राव आपते को डिस्कस किया। अब नंबर दो पे फिल्म वेलकम से उदय शेट्टी और मजनू भाई को कैसे भूल सकते हैं यार। मतलब एक तो इन दोनों का परफेक्ट मिक्स, स्कैरी गैंगस्टर और फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट, और इनका जो ब्रोमांस है ना वो अलग लेवल, लेजेंडरी। वो नाना पाटेकर बोले तो उदय शेट्टी का कंट्रोल उदय कंट्रोल हो, या फिर हमारे मजनू भाई का घोड़े पे गधे वाली पेंटिंग हो। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब नंबर तीन पे बात करते हैं फिल्म भूल भुलैया से छोटा पंडित की भाई साहब प्लेड बाय राजपाल यादव। ये कैरेक्टर जो है ना इसने अपना एक कल्ट बना रखा है। अब उनका पानी का नाम सुन के एकदम जोर से छलांग मारना हो या फिर अपने आप को पूरे तरीके से लाल रंग में रंग के, कान पे अगरबत्ती लेके लोगों के बीच इधर उधर घूमना हो, इन शॉर्ट छोटे लाल का कैरेक्टर वॉज समथिंग जिसके बिना भूल भुलैया फ्रेंचाइजी इज इनकम्प्लीट। Well, मेरी इस लिस्ट में और भी दो ऐसे ही कैरेक्टर्स की बातें बाकी हैं, बट इन अ वाइल तब तक आप भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और सोचें कि ऐसे कोई कैरेक्टर्स आपको भी पसंद आए हैं कभी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: लीड एक्टर्स में मेन कैरेक्टर एनर्जी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल बाबू मोशाय, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हर फ्राइडे हमें कोई ना कोई फिल्म जरूर मिलती है, और हर फिल्म में मेन कैरेक्टर्स तो होते हैं लेकिन उनकी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए साइड कैरेक्टर्स भी होते हैं। एंड आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे साइड एक्टर्स की डिस्कशन कर रही हूँ जिन्होंने मेन लीड से ज्यादा स्पेस हमारे दिल में बना ली है। और लिस्ट में सबसे पहले हमने हेरा फेरी से बाबूराव गणपतराव आरते की बात की। नंबर दो पे वेलकम के उदय शेट्टी एंड मंजनू भाई। नंबर तीन पे भूल भुलैया से छोटा पंडित। और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट मुन्ना भाई MBBS से सर्किट। भाई ने बोला करने का मतलब करने का। जिस तरीके से अरशद वारसी ने सर्किट के कैरेक्टर के जरिए एक सच्चा दोस्त अपने आप को प्रूव किया है ऑफ मुन्ना भाई, बोले तो संजय दत्त का किरदार ऑफ कोर्स इज रियली कमेंडेबल। एंड उनको देखने के बाद इन द मूवी हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं यही सोच रहा था कि भाई अपने जीवन में भी एक सर्किट तो मांगता है। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हुए लास्टली बात करते हैं फिल्म ऑल द बेस्ट से RGV की, बोले तो रघुनंदन दास गोवर्धन दास वाकावले। ढोंढू जस्ट चिल, ये डायलॉग हर दूसरे इंसान के जुबान पे जरूर है। मतलब ये पूरी दुनिया जो है वो हाई ऑन स्ट्रेस है, लेकिन जिस तरीके से उनकी फिलॉसफी है ढोंढू जस्ट चिल, इट जस्ट रेजोनेट्स विद द एंटायर जनरेशन। तो बताइए मेरी इस लिस्ट में आप भी कुछ ऐसे ही साइड कैरेक्टर्स का नाम ऐड करना चाहेंगे? देन फील फ्री टू डू दैट। 9930983983 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। जून का महीना बड़े ही खुशहाल तरीके से कॉमिक स्टेट में खत्म होने वाला है, बिकॉज वेलकम टू द जंगल इज रिलीजिंग नो बाबू मोशाय। सो ये होने वाली है अब तक की बिगेस्ट मल्टी स्टारर मूवी फ्रॉम द हिंदी सिनेमा, और फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जितने भी एग्जिबिटर्स हैं उनसे मेजर शोज मांगे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मूवी, and that is why Welcome to the Jungle is gonna have the widest release across India. वैसे पता ना हो तो बता दूं, फिल्म एक्चुअली 26th of June को रिलीज होने वाली थी, बट अब मेकर्स ने इसके पेड प्रीव्यूज 25 तारीख को भी खोल रखे हैं, जिसकी एडवांस बुकिंग ऑलरेडी चालू है। मैंने तो अपनी टिकट करा ली, आपका क्या प्लान है? बेबी डू और डाई ये अपकमिंग फिल्म है जिसका ट्रेलर इज आउट एंड ट्रेंडिंग। हुमा कुरैशी इस मूवी में एक डेफ एंड म्यूट कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, बेसिकली एक असैसिन प्ले कर रही हैं, विच इज सेट टू रिलीज ऑन द 3rd of July इन थिएटर्स। फिल्म को डायरेक्ट किया है नचिकेत सामंत ने, विच ऑल्सो स्टार्स सिकंदर खेर, चंकी पांडे एंड रचित सिंह जैसे एक्टर्स। वैसे इस मूवी का अल्फा के साथ काफी तगड़ा क्लैश होने वाला है। स्वानंद किरकिरे रीयूनाइट कर रहे हैं डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ उनकी डेब्यू सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो में। माइंड यू, इस सीरीज को वो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं बट इस बार प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें एक्टिंग करते भी नजर आएंगे। सो बेसिकली इस सीरीज में एक रेट्रो मेलोडी क्रिएट की गई है जिसको कंपोज किया है शांतनु मोइत्रा ने और आवाज दी है श्रेया घोषाल ने, एंड इज पिक्चराइज्ड ऑन मोना सिंह। बाकी अविनाश अरुण डायरेक्टोरियल ये सीरीज 3rd of July से हॉटस्टार पे स्ट्रीम करेगी, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है। गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका वेंसडे की इस खूबसूरत शाम में। वैसे वेंसडे ना एक ऐसा दिन होता है जो यार ज़्यादा बोलता नहीं पर सब कुछ समझ जाता है। मतलब मंडे का ड्रामा भी ये देख चुका होता है, फ्राइडे के प्लान भी ये जान लेता है, बस बीच में बैठ कर ना हमारे सारे प्लान्स को जज कर रहा होता है कि अच्छा बड़े बड़े वादे किए तुमने वीकेंड के, चलो देखते हैं कर भी पाओगे या नहीं। वैसे आज का दिन ना थोड़ा कंपोज्ड, थोड़ा स्मग जरूर लगता है, तो यार समझ जाओ वेंसडे अपना काम कर रहा है। आप भी बताओ दोस्तों, आज आप थोड़ी कंपोज थे या कंपोज रहने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि मुझसे पूछो तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड नहीं थी, लेकिन जब कभी भी शाम को आपके लिए धमाकेदार गाना बजाने का मौका मिलता है तब यार ये पूरी कायनात सारा कंपोजर मेरे लिए लेकर आती है। तो चलिए वही करते हैं, आपके लिए बजाते हैं ये अगला धमाकेदार गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसा आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
2: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा
4: है? मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है, लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: यार बदतमीजी, बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
2: हेलो
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
2: तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा
5: भाई मुझे भी टाइम पास करना था, मुझे भाई मालूम था ये। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

दोस्तों, कुछ लव सॉन्ग सुनते ही लगता है कि ये गाना लिखा नहीं गया है, किसी ने ना बस दिल की बात रिकॉर्ड कर दी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और न्यू जर्सी के शाम में अगर कोई गाना प्यार की सिंप्लिसिटी को कैप्चर करता है ना, तो वो है कैसे हुआ फ्रॉम द एल्बम कबीर सिंह। और यार, कैसे हुआ सुनते वक्त ना मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इसके जो कंपोजर है विशाल मिश्रा, उनको शायद द ग्रैंड रोमांस से ज़्यादा छोटी छोटी फीलिंग्स पसंद आती होंगी, क्योंकि इस गाने में ना ज़्यादा ड्रामेटिक डिक्लेरेशंस हैं, ना ओवर द टॉप अरेंजमेंट्स हैं, बस एक सिंपल मेलेडी है जो यार सीधा दिल तक पहुँचती है। क्योंकि विशाल मिश्रा ने इस गाने को कंपोज भी किया है, लिखा भी है और खुद गाया भी है, और शायद इसीलिए ये गाना इतना ऑर्गेनिक लगता है। जैसे कबीर सिंह के इंटेंस वर्ल्ड में ये ट्रैक ना एक सॉफ्ट सी हार्टबीट की तरह काम करता है। और कभी कभी ना सिंप्लिसिटी सबसे मुश्किल चीज़ होती है, और ये वो गाना है जो उसका एब्सोल्यूट प्रूफ है। क्योंकि यार, विशाल मिश्रा की मेलोडीज़ में ना एक खास बात ज़रूर होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। पहली बार सुनो तो लगता है कि जैसे गाना ना पहले से ही दिल में था, और शायद इसीलिए कैसे हुआ आज भी लोग गाते हैं, चाहे उन्हें गाना सीखा है या नहीं सीखा है, लेकिन दिल से गुनगुनाते ज़रूर है। तो दोस्तों, आप भी बताना कि आपकी लाइफ का वो कैसे हुआ मोमेंट क्या था जब प्यार ने बिना नॉक किए एंट्री मार दी थी, और क्या तब ये गाना बैकग्राउंड में चला था। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं विशाल मिश्रा की कंपोजिशन कैसे हुआ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

दोस्तों, प्यार का ना सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है? पागलपन। और वो भी वो वाला पागलपन जिसका कोई इलाज नहीं होता। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज बात उस गाने की हो रही है जो याद दिलाता है कि प्यार में ना थोड़ा पागल होना अलाउड है। सैयारा का गाना तुम हो तो, क्योंकि इस गाने को सुनते वक्त लगता है कि जैसे दुनिया का सारा लॉजिक एक तरफ और दिल एक तरफ। और इसे गाया और कंपोज किया गया है विशाल मिश्रा ने, जिनके गाने की ना एक खास बात होती है कि वो प्यार को परफेक्ट नहीं दिखाते, वो उसका पागलपन दिखा देते हैं। किसी का मैसेज बार बार पढ़ना, बिना वजह स्माइल करना, हर गाने में एक ही चेहरा दिखाना, यार ये सब वही स्वीट मैडनेस है जो इस मेलेडी में महसूस होती है जब भी हम ये गाना सुनते हैं। और विशाल मिश्रा की सॉफ्ट वोकल्स और कंपोजिशन गाने की फीलिंग को इतना गहरा कर देती है ना कि लिसनर खुद अपनी कहानी सोचने लगता है। और शायद इसीलिए उनके रोमांटिक सॉन्ग्स इतने ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें प्यार कम और उसका पागलपन ज़्यादा देता है। तो चलिए आज कन्फेशन करते हैं, प्यार में आपने सबसे पागल चीज क्या की थी? लॉन्ग ड्राइव, लेट नाइट कॉल्स, या फिर किसी का लास्ट सीन चुप चुप के देखना? टेल मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और सुनते हैं विशाल मिश्रा ने गाया हुआ पागलपन वाला ये गाना, तुम हो तो, फ्रॉम सैयारा, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्तों, क्या कभी किसी गाने ने आपको आपकी ही कहानी याद दिलाई है? वो पहला प्यार, वो रात भर चलने वाली बातें, वो एक नाम जो आज भी किसी गाने के साथ याद आ ही जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और बात हो रही है एक ऐसे कंपोजर की जिनका हर गाना हमें अपनी कहानी जैसा लगता है। अ वॉइस दैट गेव अस कैसे हुआ, पहले भी मैं तुम हो तो, जिन गानों को ना हमने सिर्फ सुना नहीं है बल्कि महसूस किया है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आ रहा है विशाल मिश्रा पागलपन टूर, ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC। और नाम ही सब कुछ कह देता है, पागलपन यानी वही पागलपन जो प्यार में होता है, वही पागलपन जो किसी याद को गाने के साथ जोड़ देता है, और वही पागलपन जो अटलांटिक सिटी में हजारों लोगों को एक साथ एक ही सुर में लाने वाला है। तो डेट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं 26 जून शुक्रवार की शाम को हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना अटलांटिक सिटी में। और आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiyusa.com। और हमेशा की तरह मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बताना है कि विशाल मिश्रा का कंपोज्ड गाना कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ कौन से मूवी का है। डीएम मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो @9033647244 टू विन फ्री कॉन्सर्ट टिकट्स। एंड रिमेंबर माई फ्रेंड्स, इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC प्रेजेंटेशन, सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर इवनिंग विद विशाल मिश्रा पागलपन टूर। एक शाम जहां गाने सिर्फ परफॉर्म नहीं होंगे, वो आपको आपकी खुद की कहानी याद दिलाएंगे। तो जल्दी से अपने टिकट बुक कर लीजिए, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका वेंसडे की इस खूबसूरत शाम में। वैसे वेंसडे ना एक ऐसा दिन होता है जो यार ज़्यादा बोलता नहीं पर सब कुछ समझ जाता है। मतलब मंडे का ड्रामा भी ये देख चुका होता है, फ्राइडे के प्लान भी ये जान लेता है, बस बीच में बैठ कर ना हमारे सारे प्लान्स को जज कर रहा होता है कि अच्छा बड़े बड़े वादे किए तुमने वीकेंड के, चलो देखते हैं कर भी पाओगे या नहीं। वैसे आज का दिन ना थोड़ा कंपोज्ड, थोड़ा स्मग जरूर लगता है, तो यार समझ जाओ वेंसडे अपना काम कर रहा है। आप भी बताओ दोस्तों, आज आप थोड़े कंपोज थे या कंपोज रहने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि मुझसे पूछो तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड नहीं थी, लेकिन जब कभी भी शाम को आपके लिए धमाकेदार गाना बजाने का मौका मिलता है तब यार ये पूरी कायनात सारा कंपोजर मेरे लिए लेकर आती है। तो चलिए वही करते हैं, आपके लिए बजाते हैं ये अगला धमाकेदार गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La firma la burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Vipul, man. से बोल रहा हूँ आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए आपके मोबाइल का इनबॉक्स, तो मैं अपना आदमी भेज दूँ या आप यहाँ पे आके जमा करा देंगे?
2: इनबॉक्स चाहिए, इनबॉक्स कैसा मतलब?
3: मैं आपको वही समझा रहा हूँ, एक्चुअली हमारी कंपनी अपना सर्वर चेंज कर रही है, तो सर्वर में जो डेटा होता है अब वो सर्वर हटाएंगे तो सारा डेटा हमें कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो हम आपके इनबॉक्स में रखेंगे कुछ दिन तक वो डेटा, अब वो जब हमारा सर्वर नया लग जाएगा तो हम आपको इनबॉक्स आपका वापस कर देंगे, तो मैं यहाँ से कंप्यूटर में फीड कर रहा हूँ आपका इनबॉक्स अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है सर?
2: नहीं बात तो सुनो भाई साहब।
3: हाँ बताइए।
2: नहीं तो जो इनबॉक्स है मेरा वो तो मेरा अपने फोन मेमोरी में है ना?
3: नहीं वो हम खींच लेंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए।
2: नहीं तो आप कैसे उसको अपलोड करेंगे?
3: मैं कुछ भी करूँ यार, आप ज्यादा बहस करते क्यों, एक तो सर्वर वो उतार रहे हैं आप मुझसे बहस कर रहे हैं।
2: बहस वाली बात नहीं है, मतलब मैं खुद मालूम तो करूँ ना, अगर आप मेरे से कोई बात पूछ रहे हैं तो कम
3: बिल्कुल,
2: से कम मुझे
3: बिल्कुल
2: मालूम
3: से, होना बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: जा कहाँ रहा है?
3: नहीं वो जा कहाँ रहा है, जा यहीं रहा है, आपकी कंपनी में जा रहा है, और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका कुछ दिन के लिए हमें इनबॉक्स चाहिए, अब उसमें आपको टेंशन क्या है, हम आपके मैसेजेस रखेंगे उसको पढ़ेंगे सही से।
2: मेरे प्राइवेट एसएमएस है उसमें, मैं ऐसे किस तरह से दे दूँ उसको?
3: वैसे आप बुरा मत मानना, आपके मना करने से मुझे लग रहा है कि आप मैंने उसमें सारे नॉन वेज मैसेजेस रखे हुए हैं उसमें।
2: यार क्या बात कर रहा
3: है,
2: मतलब
3: नॉन वेज एसएमएस क्यों रखे हुए हैं यार आपने उसमें, बेकार की बातें कर रहे हैं, आप कंपनी को जरूरत है? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप उस पर? मैं तो मुझे सिर्फ इनबॉक्स नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए।
2: चल
3: नहीं नहीं आपने फॉर्म भरा था सेकंड पेज पे, मेरे हाथ में है, रुकिए रुकिए, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है कि कंपनी आपका इनबॉक्स कभी भी ले सकती है, उसमें कस्टमर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके घर की बाल्टी, आपके बर्तन, आपके कपड़े तक उतरवा सकती है।
2: बिल्कुल
3: क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप पूरी। हेलो
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब, आपने फोन काट दिया यार, इनबॉक्स लेने की बात कर रहा था मैं, आप फोन काट रहे हैं यार।
2: आपको से फोन मत करियो, मैं हाँ? इनबॉक्स बना दूंगा, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्या क्या क्या क्या यार बात सुनिए आप मेरी, मैं आपसे सिर्फ एक बात, एक बार विपुल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, कोई तुम्हारा इनबॉक्स नहीं चाहिए, मैंने मुर्गा बनाया है तुम्हारा, तुम रेडियो मिर्ची पे हो।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

चाहे कितने भी एल्गोरिदम्स बना लो, चाहे कितने भी एनालिसिस कर लो, कुछ चीजें ना अनप्रिडिक्टेबल ही रहती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और फिर चाहे वेदर हो या फिर मूड हो, कभी कभी समझ ही नहीं आता मतलब आज अच्छा दिन होने वाला है या नहीं है। और न्यू जर्सी में तो यार हमें हर बार वेदर ऐप्स देखने पड़ते हैं कि सुबह जो वेदर होता है वो शायद शाम को ना मिले और शाम को जो वेदर होता है वो शायद सुबह ना मिले। तो जब भी अच्छा वेदर हो निकल लो, चल पड़ो, चाहे फिर वो एक वॉक के लिए हो या एक खूबसूरत सी ड्राइव के लिए हो। और कुछ ऐसा ही होता है जब मार्केट भी अनप्रेडिक्टेबल हो, तब हमें चाहिए होता है एक ऐसा एक्सपर्ट जो हमें सही गाइडेंस दे कि कब किस मार्केट का किस तरह से फायदा उठाना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए, उसी के लिए तो मेरे दोस्त बीश आपकी मदद करने के लिए हाजिर है। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्यू ईयर से न्यू बिगिनिंग्स करते हैं, तो कुछ लोग मंडे से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, तो कुछ लोग हर दूसरे दिन बोलते हैं कि कल से पक्का। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और सच कहूँ ना तो हम सबको फ्रेश स्टार्ट्स बहुत ही पसंद होती है, फिर चाहे नई डायरी हो, नया प्लेलिस्ट हो, नया हेयर कट हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नई बिगिनिंग्स में ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। और कभी कभी ये फीलिंग सिर्फ रेजोल्यूशन तक सीमित नहीं रहती, कुछ और भी होता है जिसे देख के लगता है कि यार अब इसका ना नया वर्जन होना चाहिए। और शायद इसी सोच के साथ तनिष्क लाया है फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज। नाउ तनिष्क टेक्स योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी व्हिच इज अबाउट 9 कैरेट फ्रॉम एनी ज्वेलर्स फॉर फुल वैल्यू विद 0 डिडक्शन। Also, you can get additional $5 per gram on exchange gold with diamond purchases. Terms and conditions apply. So, aaj hi visit kijiye Tanishq New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. और दोस्तों आपने भी लाइफ में सबसे सक्सेसफुल फ्रेश स्टार्ट कब किया था वो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर नहीं किया है तो यार करते हैं अभी शुभारंभ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सुनते ही लगता है कि ये तो ट्रेंड फॉलो करने नहीं आए हैं, ये अपना एक एहसास छोड़ने आए हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और कुछ ऐसा ही फील आता है एक दीवाने की दीवानियत टाइटल ट्रैक सुनते वक्त, क्योंकि आजकल हम गाने बहुत ही जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं। रील देखी, हुक सुना, फिर नेक्स्ट स्वाइप कर लिया, लेकिन ये गाना ना उस रेस का हिस्सा नहीं लगता। ये आपको थोड़ा सा रुकने के लिए कहता है। गाने की मेलोडी धीरे धीरे खुलती है और कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, म्यूजिक और वोकल्स दोनों सांस लेने की जगह देती है, और शायद इसीलिए गाना सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस होता है। और फिर आती है विशाल मिश्रा की आवाज़। यार, उनकी आवाज़ की ना सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि उनमें परफेक्शन से ज़्यादा इमोशन सुनाई देता है, और ऐसा लगता है कि वो गाना गा नहीं रहे हैं, वो उस एहसास को एक्चुअल में जी रहे हैं। हर लाइन में एक सिंसियरिटी होती है, एक रॉनेस होती है जो सीधा दिल तक पहुंचती है, और मुझे लगता है शायद इसीलिए विशाल मिश्रा के गाने आज के म्यूज़िक लैंडस्केप में एकदम अलग नज़र आते हैं। क्योंकि जब बहुत सारे ट्रैक्स बीट और ट्रेंड के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तब उनके गाने मेलेडी और इमोशन को सेंटर स्टेज बना देते हैं, और शायद यही खास बात है इस गाने की भी। तो गाना ख़त्म होने के बाद लिरिक्स या हुक से भी ज़्यादा ना उसका मूड साथ रह जाता है, और शायद इसी वजह से ये गाने सच्ची में जीत जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये गाना सुना है तो ज़रूर बताना कि किस चीज़ ने आपको ज़्यादा होल्ड किया है, मेलेडी, लिरिक्स या विशाल मिश्रा की वो दिल से निकली हुई आवाज़। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और सुनते हैं दीवानियत राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम गुड इवनिंग।
3: हाय
4: बैंक से बोल रहे हो ना? हमारी नई स्कीम आई है मैडम, ताजी स्कीम है, बढ़िया स्कीम है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम।
3: सब्जी बेच रहा है या लोन के लिए?
4: पहले सब पहले सब्जी बेचता था।
3: अगर अगली बार फोन आ गया ना
4: मैडम, तमीज से बात करो वरना यहीं से चपेट मारूंगा सारे दांत। बात कर
3: दो।
4: मेरा अगर ये स्कीम लोगी तो धनिया साथ फ्री दे दूंगा।
5: प्रीति मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि लड़कियों से ज्यादा पंगे लेने नहीं चाहिए, अपने ऊपर पड़ जाती है यार। आप रेडियो मिर्ची में इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपका मुर्गा बन गया
3: है।
4: मेरा आपका तो मुर्गा बन गया है।
5: प्रीति ये जो बीप बीप हो रहा था ये बीप हटा दूं मैं? एक बार दिल्ली को सुना दूं?
3: नहीं
5: से सॉरी
3: सॉरी ना मैं सॉरी।
5: प्यार से बोल दीजिए कोकड़ो को है
3: कुकड़ो को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: चीजों के लिए ना लॉजिक चाहिए होता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए सिर्फ पागलपन। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चाहे किसी के लिए रात भर जगना हो, एक गाने को 100 बार रिपीट पे सुनना हो, कॉन्सर्ट के लिए मीलों ट्रैवल करना हो, या फिर हजारों लोगों के बीच खड़े होकर पूरी आवाज से लिरिक्स गाना हो, यार इन सब के लिए ना लॉजिक नहीं पागलपन तो होना चाहिए। और इसी एहसास को सेलिब्रेट करने आ रहे हैं विशाल मिश्रा अपने पागलपन टूर 2026 के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं, उन लोगों का सेलिब्रेशन है जो दिल की बात दिल से करते हैं, जो म्यूजिक को सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज नहीं अपनी कहानी का हिस्सा मानते हैं। एंड इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन। तो आप तो जानते ही हो कि कैनवस हमेशा ग्रैंड होता है, एक्सपीरियंस मेमोरेबल होता है, और शाम हमेशा एक्सपेक्टेशन से बड़ी होती है। तो तैयार हो जाइए न्यू जर्सी एक ऐसी म्यूजिकल नाइट के लिए जहां सुर भी होंगे, जज्बात भी होंगे, और थोड़ा सा वो खूबसूरत सा पागलपन भी होगा जो जिंदगी को यादगार बना देता है। विशाल मिश्रा लाइव इन कॉन्सर्ट पागलपन टूर 2026 आ रहा है शुक्रवार को June 26th 8 PM onwards at the wonderful venue of Hard Rock Live Etis Arena Atlantic City. तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiusainc.com, क्योंकि चंद ही दिन बचे हैं, तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए। और दोस्तों मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बस बताना है कि पागलपन भरा कैसे हुआ, ये जो गाना है विशाल मिश्रा का, ये कौन से मूवी का है? टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एट 9033647244, और अपना नाम अपना नंबर ईमेल आईडी भेजना, क्योंकि जल्द ही विनर्स डिक्लेयर होने वाले हैं फॉर फ्री कॉन्सर्ट टिकट्स। तो जल्दी से अपने जवाब भेजिए कि कैसे हुआ, ये गाना कौन से मूवी का है, और तैयार हो जाइए एक ऐसी शाम के लिए जिसमें पागलपन सिर्फ देखा नहीं जाएगा, महसूस भी होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।
1: जो भिड़ा

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

एक एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ इतने सारे गाने बनते हैं, कभी कोई हिट होते हैं, कभी कोई फ्लॉप, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसके सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक होते हैं, जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते और वो टाइमलेस रह जाते हैं। जी हाँ, 2007 की मूवी सलाम इश्क, वो एक ऐसा बॉलीवुड म्यूजिक का एल्बम था जिसके यार इतने अमेजिंग गाने थे। मतलब ये एल्बम नहीं था, ये तो थी एक म्यूजिकल थाली, क्योंकि छह अलग कहानियां और उससे भी ज्यादा उनके अमेजिंग से जज्बात जो कि कैप्चर हुए थे हर एक गानों में। तो चलिए, इसी का एक गाना है सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। दोस्तों इसमें तो यार छह जोड़ियां एक ही फ्रेम में दिख रही थी और लोगों ने कहा कि ये ना कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एवेंजर्स मोमेंट था, क्योंकि वैसे तो एवेंजर मोमेंट 2008 में आया था, लेकिन बॉलीवुड ने बहुत ही पहले, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, 2007, इतने सारी जोड़ियां एक साथ, इतने सारे सिंगर्स एक साथ आए थे इस एक गाने के लिए सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। वैसे तो यार सॉन्ग का स्केल और ग्रैंडियर देख के यही लगता था कि किसी अवार्ड शो के लिए ही ये गाना बनाया हो, क्योंकि शूटिंग के लिए भी इतना मैसिव सेट डिजाइन हुआ था और सारी जोड़ियों को एक ही दिन में सिंक प्रैक्टिस करनी थी। तो जी हाँ, सारे जो बॉलीवुड की जोड़ियाँ थी वो तो इस गाने में थी, लेकिन सारे जो म्यूजिकल सिंगर्स यानी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और भी कई सारे सिंगर्स एक ही साथ इस गाने में थे, तो ये गाना तो एक शादी थीम बनना ही था। चलिए सुनते हैं सलामे इश्क टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सलामे इश्क। लेकिन आप भी बताइए वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका कोई भी गाना आप स्किप नहीं कर पाते। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक सलामे इश्क का ये टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है यार कि कभी कभी कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं कि जिसका कोई भी गाना मन ही नहीं करता कि हम स्किप करें। और वो जब ज़माना आता था ना कि जब कैसेट्स आती थी, तो एक ऐसी कैसेट उस एल्बम की बाय करना तो फुल ऑन पैसा वसूल लगता था। और ऐसा ही एक एल्बम था 2007 का, सलामे इश्क, जिसके यार हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग था। सलाम इस टाइटल ट्रैक के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन और एक गाना इस एल्बम का तेनु लेके, जो कि गाया गया है सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे तो यार इस गाने के लिए सलमान खान ने जो डांस किया था और उनकी जो एंट्री आई थी, वो एंट्री कई सारी शादियों का एंथम बन गया था। मतलब इतने सारे दुल्हों ने उसी गाने पर अपनी एंट्री की है कि यार बस तेनु मैं लेके जावांगा, ये एक शादी के लिए बहुत ही बेस थीम बन गया था। और ना सिर्फ शादी के लिए यार, मतलब प्रपोजल के लिए भी यही गाना यूज करते थे। जी हाँ, ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड ये चला, जब तक कि नए गाने नहीं आए। तो वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम तेनू लेके मैं जावांगा, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया हुआ ये गाना, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग। तो चलिए इसे प्ले करते हैं। लेकिन और भी एक गाना बाकी है इसी एल्बम का। वैसे आप भी मुझे अपने रिक्वेस्ट जल्द से जल्द भेज सकते हो, DM मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI, कि इस एल्बम का आपको कौन सा गाना पसंद है, जल्दी से बताइए। और तब तक के लिए तेनू लेके मैं जावांगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे इतने सारे गाने जहां बनते हैं, कुछ फ्लॉप कुछ हिट, लेकिन यार कुछ ऐसे एल्बम्स बनते थे जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता था। और 2007 में रिलीज हुआ एक ऐसा एल्बम सलामी इश्क, जी हाँ, शंकर महादेवन के मैक्सिमम कंपोजिशंस इस एल्बम के लिए थे। और हर एक गाना यार ब्लॉकबस्टर था, मतलब आप स्किप ही नहीं कर सकते, चाहे वो बाबूजी धीरे चलना का रिमिक्स वर्जन ही क्यों ना हो। तो यार इसी एल्बम का एक जो सॉन्ग है वो बहुत ही खास है, एंड दैट इज मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। वैसे तो यार इस गाने को जब फिल्माया गया था तो इतने सारे कपल्स हैं इस मूवी में, जॉन अब्राहम विद्या बालन हो, उनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग थी, फिर चाहे हमारी प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान हो, लेकिन यार सबसे ज़्यादा जो अमेजिंग केमिस्ट्री थी जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, दैट वॉज शैनन एसरा एंड गोविंदा की। मतलब ये गाना स्पेसिफिकली जिसमें शैनन एसरा ने बहुत सारे एथनिक कॉस्ट्यूम्स पहने थे और गोविंदा बीन गोविंदा अलग अलग जगहों पर डांस किए जा रहे थे, मतलब कहीं हवेलियों के सामने कहीं ट्रक पर, दिस सॉन्ग वॉज रियली रियली ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड। और गोविंदा के डांस मूव्स, मतलब दे वर किलिंग इट, दे वर टोटली किलिंग इट। तो वेरी वेरी क्यूट सॉन्ग और बहुत ही क्यूट जोड़ी लग रही थी शैनन एसरा और गोविंदा की। वैसे यार ये गाना इतना ज़्यादा प्यारा है तो यू कैन लिसन टू इट एनी टाइम। तो अभी मैं आपके लिए बजाने वाली हूँ मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो इस एल्बम का आपका कौन सा फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धी, SIDDHI। और तब तक के लिए सलाम इश्क का मेरा दिल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hi. ये पे आपकी फ्री कॉल है। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं और चाहते हैं किसी को अपना बनाना, किसी से अभी बात करना, तो हैश दबाइए। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल उस तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही हैं?
2: आप कौन बोल रही हैं?
4: बोल नहीं रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मेरी लड़की से बात करानी थी, फोन आया था मेरे पास।
2: तो भाई मेरे पास भी तो फोन आया था।
4: तो यार आप कहाँ से बीच में आ गए? वो कह रहे थे लाइफ पार्टनर, मैं लड़की से बात करना चाह रहा हूँ।
2: टाइम पे दोनों को भी, आपको भी करा होगा फोन, उन्होंने मुझे भी करा होगा, तो मैंने भी मिला दिया।
4: मैं क्या पागल हूँ यार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है, लड़की का इंतजार कर रहा था मैं यार। मेरे पास फोन आया था, आप अपनी चला रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ क्या?
2: ये तो वहाँ से मेरे पास,
4: अरे यार
2: जैसे आपके पास आया कि अगर आप खाली बैठे।
4: हो सकता है, हो सकता है।
3: हाय, आप दोनों की कॉल गलती से मिल गई है, कृपया लाइन होल्ड रखें, आप दोनों को अपने अपने पार्टनर तक पहुंचा दिया जाएगा।
4: हेलो।
2: हेलो,
4: कौन बोल रही है? अरे भाई यार, मैं लड़की के चक्कर में यार, कहां से आ रहे हो यार बीच में? मैं मेरी लाइन,
2: भाई ये नंबर क्या है, तू बता, तू क्यों लाइन में आ रहा
4: है? मैं कहां से लाइन पे आ रहा हूँ यार, तू लाइन में आ रहा है? लाइन में आ रहा हूँ तो एक घंटे से मैं एक लड़की से बात करने के लिए चाह रहा हूँ यार, तू मुझ पर चिल्ला रहा है, मेरे पास कॉल आई है यहाँ पे। हाँ तो दो मिनट रुक, तू कर ले, तेरा कुछ जा रहा
2: है?
4: यार बदतमीजी बदतमीजी मत कर, तू बड़ा शरीफ आदमी है जो यहाँ पे इस लाइन में आया हुआ है, इस सर्विस में।
3: हाय, कृपया करके लड़ाई बंद करें, अब आपकी लास्ट फाइनल कॉल, हम उस लड़की तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन लाइन तक पहुँचने के लिए आप कहिए मेरे साथ कुकड़ू कू।
2: हेलो
4: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दुनिया आपको सुन रही है, कम से कम इतनी तमीज होनी चाहिए यार, आप लड़की से बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का टाइम पास करना चाह रहे थे?
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वैसे खूबसूरत शाम के खूबसूरत गाने तो बज ही रहे हैं, लेकिन यार एक ऐसा खूबसूरत एल्बम निकला था जिसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे। 2007 की रिलीज्ड सलाम इश्क की मूवी का जो गाना है, सॉरी जो एल्बम है, उसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे यार। शंकर एहसान लॉय ने इस एल्बम को कंपोज किया था और इसके काफ़ी सारे गानों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन एक गाना है जो आपने रिक्वेस्ट किया है। जी हाँ, आदित्य पाटिल एडिसन में जो रहते हैं, उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया इसी एल्बम का, एंड दैट इज दिल क्या करे संग बाय अदनान सामी। वैसे तो यार दोस्तों, सलाम इश्क का टाइटल ट्रैक तो अमेजिंग था ही, लेकिन उसी टाइटल ट्रैक का एक अलग वर्जन बनाया गया था दिल क्या करे इस गाने में, अदनान सामी की मैजिकल वॉइस में। और एक खास बात थी इस गाने की कि यार इस गाने का जो पूरा मूड है, पूरा रोमांटिक मूड है, यू नो पूरा रोमांस ओवरलोडेड है इस गाने में, लेकिन उस रोमांस के वाइब को रखने के लिए यानी सेटअप करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना सिर्फ एक कैंडल जलाई थी ताकि एक नो अच्छा सा मूड सेट हो जाए और अदनान सामी एकदम हैप्पी लिए गाना गा पाए, एकदम अमेजिंग मूड में, शाम वाले मूड में। और ऐसा ही कुछ हुआ, बस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक कैंडल जलाई गई थी और उसी कैंडल की लाइट में अदनान सामी ने अपनी मैजिकल आवाज में ये गाना गाया। तो चलिए आदित्य के लिए बजाते हैं दिल क्या करे फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम्स सलाम इश्क 2007 की रिलीज। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई एल्बम पता है जिसके सारे के सारे गाने आपको पसंद है तो टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH चाहे, क्योंकि बजाते हैं यार उस एल्बम के सारे गाने राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
2: दोस्तों, कभी कभी लाइफ में ना स्ट्रेंजर्स भी फैमिली जैसे लगने लगते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और फिर चाहे हॉस्पिटल का वेटिंग रूम हो या वो स्ट्रेसफुल मोमेंट जब किसी अपने के रिपोर्ट्स का वेट हो, उस वक्त एक काम वॉइस, एक केयरिंग नर्स या फिर एक हेल्पफुल टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और शायद इसीलिए हेल्थ केयर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं लगता, एक रीअश्योरेंस लगता है। और अगर आप भी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो जहाँ आप भी किसी के हेल्प का रीज़न, किसी के राहत का रीज़न बन सकते हो, तो आज ही कॉल कीजिए एम्स एजुकेशन को, द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, एट 9082220002, 9082220002, या फिर आप विजिट कर सकते हो aimseducation.edu और डिस्कवर कीजिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के कितने सारे अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रहे हैं। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।